0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरी है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरु मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
7: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
6: बिंदास मॉर्निंग।
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: श्रोताओं, कहते हैं जिंदगी को अगर आसान बनाना है, जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो शिकायतें कम और शुक्राना ज्यादा करो, जीवन बहुत ही सुंदर लगने लगे। जब हम शिकायतें कम रखते हैं ना और लोगों का धन्यवाद, उनका शुक्राना ज्यादा करते हैं, उनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो हमें खुद को भी खुशी मिलती है और हमारा जीवन और भी खूबसूरत हो जाता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, सुप्रभात, नमस्कारम। इसी खूबसूरत बात के साथ हो रही है मेरी आज की सुबह की शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक सुबह की सुपर डुपर वाली ताजगी से भरी गुड मॉर्निंग है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अगर स्टेशन क्लॉक की घड़ी की सुइयां की अगर बात करें, जो सुइयां हैं लगातार जो आगे बढ़ रही हैं, यानी कि अगर टाइम की मैं बात करूं तो घड़ी घड़ी इस वक्त बता रही है समय 8:21 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में। और तारीख की बात करें तो आज 11 जुलाई की तारीख है, जो कि अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत ही विशेष तारीख है आज की। इसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। फिलहाल आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद। अब से लेकर 10 बजे तक रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। मौसम बहुत ही औसम है और इस औसम वाले मौसम में जब अच्छे गाने होते हैं तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मौसम तो है ही खूबसूरत, लेकिन इस खूबसूरत मौसम में अच्छे गाने सुनने को आपको डेफिनेटली मिलेंगे। फिलहाल आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। बच्चे तो स्कूल पहुंच चुके हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे को बहुत कुछ आपके साथ साझा करना है आज की सुबह, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको।
1: अपनी आंखें बंद करो संजय।
0: मैं आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं आपसे लाइव बातें कर रहा हूं। चलिए, खूबसूरत ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द फिल्म प्यार तो होना ही था, 1998 में फिल्म आई, आशा ताई और उदित नारायण साहब की आवाजों में सुनेंगे इस खूबसूरत किस्से गीत को। लिखा है समीर साहब ने, म्यूजिक दिया है जतिन ललित साहब ने, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। इसी को सुनते हुए करेंगे अपने सुबह के सफर की शुरुआत। गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही जिंदगी सही।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

सभी का वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स अच्छे गाने अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ, और ये गाना शाहदा का बड़ा ही ब्यूटीफुल ट्रैक, इतना प्यारा गाना कि सुनते ही मजा आ गया है ना. फ्लैशबैक में चले गए आप लोग, मैं भी आपके साथ फ्लैशबैक में पहुंच गया था. वेरी गुड मॉर्निंग है जी. 8:35 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को. आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत अभिनंदन इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक. श्रोताओं, बाहर झमाझम बारिश हो रही है, यानी ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास अभी वो विंडो वाला साधन अवेलेबल नहीं है, ये आप मुझे बता सकते हैं. लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं घर पर था तब बारिश हल्की सी आई थी एंड उसके बाद बारिश गायब हो गई. और अगर अभी बारिश आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो मौसम तो है ही सुहाना. और श्रोताओं, हर दिन का जो इतिहास होता है बहुत खास होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता है हर दिन की तारीख में. और आज की तारीख में भी बहुत कुछ खास है, वही मुझे आपको बताना है. लेकिन उससे पहले बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को अब एडिट करना पड़ता है, क्योंकि जमाने को सिर्फ फिल्टर लगी हुई चीजें ही पसंद आती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे इंसान की शक्ल हो या रियल लाइफ में आपका झूठ या सच. उसको जितना फिल्टर करोगे ना, उतना ही आप लोगों को जेन्युइन लगोगे. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत चीजों को ज्यादा तवज्जो दें. नहीं नहीं नहीं, आप जैसे है ना आप वैसे ही रहिए. बी नेचुरल एंड बी प्रैक्टिकल. जितना प्रैक्टिकल होंगे, नेचुरल होंगे, उतना ही बढ़िया होगा. और देखो यार, अच्छी बातें करने से ना जिंदगी अच्छी नहीं बनती है. अच्छी बातों को फॉलो करना पड़ता है, उनको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ता है ना. उन बातों पर हमें जो है थोड़ा सा अमल करना पड़ता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी है मेरे दोस्त, है ना. तो सिर्फ अच्छी बातों को सुनिए मत, उनको अमल कीजिए, उन पर काम कीजिए और उनको अपनी जिंदगी में थोड़ी सी अहमियत दीजिए. जिस दिन आप ये करने लगेंगे ना, यकीन मानिए उस दिन आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट होगी मेरे दोस्त. चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं. और आज का दिन क्यों खास है इस पे हम बात करेंगे. वक्त हो गया है 8:37. आप सुन रहे हैं आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन. बड़ी प्यारे प्यारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह. डेफिनेटली हम आपके मैसेज को शामिल करेंगे. आप कहीं मत जाइएगा, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइएगा. थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो आपके मैसेज को जरूर शामिल करेंगे आपके नाम के साथ. आप ऐसे ही जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में. फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया है आज के दिन के बारे में जानने का. आज 11 जुलाई की तारीख क्यों खास है.

चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 11 जुलाई के बारे में। तो अभी हम आपको बता भी रहे थे कि क्या कुछ खास रहा, तो आपको बता दें हॉलीवुड बाउल की जो शुरुआत थी वो आज ही के दिन हुई थी श्रोताओं, 11 जुलाई 1922 को, यानी कि सन 1922 को हॉलीवुड बाउल की शुरुआत हुई थी श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बताते चलिए आज ही के दिन चांग शांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सन 2002 में। लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदा ए सरहद बस का परिचालन जो था वो शुरू हुआ था सन 2003 में आज ही के दिन। आपको बता दें एचआईवी एड्स पर एशिया मंत्रियों का सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं, और ये सन 2004 में आज ही के दिन किया गया। और आपको बताते चलें आज ही के दिन अमित घोष जी का जन्म हुआ जो अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, 1956 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन सरदार बलदेव सिंह का भी जन्म हुआ जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं प्रथम रक्षा मंत्री थे श्रोताओं। आज ही के दिन सन 1902 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया, क्योंकि जो कुछ खास करते हैं, जो कुछ खास सोचते हैं ना, उनके नाम डेफिनेटली इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं श्रोताओं। एक और खूबसूरत नाम जो आज के दिन को और भी खास बनाता है, जी हाँ, भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता रहे, सन 1857 में जन्म हुआ इनका, श्री शंकरन नारायण जी की मैं बात कर रहा हूँ। जी श्री शंकरन नायर जी जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था श्रोताओं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन का इतिहास बहुत खास होता है, तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिन को और हमारे इतिहास को दोनों को बहुत स्पेशल बनाते हैं, उनका योगदान उनका कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए कि उनका नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इन इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। हम तो आपसे भी कहना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ आप भी ऐसा कीजिए कि आने वाले समय में आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। तो उठाइए अपने कर्मों की किताब और लिख डाली कुछ बेहतर से बेहतरीन, ताकि आने वाला समय आपके नाम को भी ऐसे ही परचम की तरह लहरा दे।

चलिए साथियों, ये था आज के दिन से जुड़ा कुछ प्यारा सा कोटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई मीन टू से कि आज का दिन क्यों खास है, क्या कुछ स्पेशल रहा आज की तारीख में, ये हम आपको बता रहे थे। श्रोताओं, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं 9837896896 पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। चलिए अभी चलेंगे एक म्यूजिकल ट्रैक की ओर। 8:41 का समय हो गया है स्टेशन की घड़ी में। अगर आप भी मेरे साथ इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वागत है 9837896896। हम नंबर आपको बैक टू बैक बताते हैं ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हर हाल में, हर सिचुएशन में आप जुड़े रहें हमारे साथ। बस एक दोस्त चाहिए जो हमारे शो को थोड़ा खास बना दे, और वो दोस्त आप सभी तो हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक शहनुदा की आवाज में निकल गया है, राहुल रॉय के ऊपर पिक्चराइजेशन है, आशिक की फिल्म का ट्रैक, इसका म्यूजिक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। चलिए इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। शो ट्यून इन है बिंदास मॉर्निंग आनंद के साथ। सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। थोड़ी देर में मिलते हैं, आई विल बी राइट बैक। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुबह सुबह ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए यार, लेकिन फिलहाल गाना बहुत ही खूबसूरत था। 8:54 हो रहे हैं श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं नीतू जी, लिखती हैं नीतू सिंह लाइन पार ढक्का से। आनंद भाई राधे राधे, कैसे हैं आप? मेरा नाम नीतू सिंह है, लाइन पार से मैं मैसेज कर रही हूं। एंड लिखती हैं, और सच में मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, इसके साथ ही साथ सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने आप को भी बारिश से जो है बचाने की कोशिश करें और ज़्यादा भीगने की कोशिश ना करें। बिल्कुल जी, सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है आजकल, मेरा तो भाई गला ही 2 दिन से साथ नहीं दे रहा है, बहुत दर्द हो रहा है गले में। एंड मुझे लग रहा है कि आज फाइनली अपना चेकअप करवा लेना चाहिए मुझे भी। आई डोंट नो, हो सकता है ज़्यादा तेज बोलने की वजह से हो, या फिर रेडियो पे बहुत सारे और भी काम होते हैं उसकी वजह से, कुछ भी हो सकता है यार, बट मुझे भी लग रहा है कि अब अवॉइड नहीं करना चाहिए। खैर, ये लिखती हैं, आजकल बुखार जुकाम सर्दी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे में सब अपना बचाव करें, सब अपना स्पेशली ध्यान रखें, और स्पेशली आपको भी आनंद जी, आप सबकी मॉर्निंग को बिंदास बनाते हो, इतना अच्छा शो करते हो, इतने प्यारे सॉन्ग प्ले करते हो आनंद, तो मैं यार मैं क्या बताऊँ नीतू जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डेली कोशिश करता हूँ कि आज तो मैं चांद पे पहुँच ही जाऊँगा, आप समझ रही हो ना, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं पाता हूँ, बस वो चांद की जो दूरी है ना थोड़ी सी है, बस कभी भी मौका लग सकता है। खैर चलिए, मैं आज चांद पे जाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर ये चांद तक मैं सब पहुँच गया तो समझो सफलता मिल जाएगी, लेकिन मैं आज पूरा प्रयास करूंगा कि मैं चांद पर पहुंच जाऊं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैसेज करेंगे आप भी मुझे 9837896896। जय श्री राम आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कौन से चांद पे जाने की बात कर रहे हो? एक वड्डा वाला चांद है, डेफिनेटली बताऊंगा अभी आपको। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू? मेरा नाम शिखा है, मौसम तुमने बहुत अच्छा कर दिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच शिखा जी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई अच्छा मौसम नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऊपर वाले मेहरबान है। अच्छा आपको क्या लगता है, सावन स्टार्ट हो गया है या अभी नहीं हुआ है, या मानसून स्टार्ट हो गया है? आई कॉन्ट बिलीव दिस कि मौसम तो बारिश वाला है, बट कोई कह रहा है अभी सावन आया ही नहीं है, कोई कह रहा है अभी मानसून शुरू हुआ ही नहीं है। आपको क्या लगता है, जो बारिश हो रही है लगातार 3-4 दिन से, क्या ये सच में मानसून की दस्तक है, या ऐसा लग रहा है कि सावन शुरू हो गया है? आपको क्या लग रहा है आप मुझे बताओ, व्हाटएवर, मुझे व्हाट्सएप करो आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सावन है या ये मॉनसून है या बस ये गर्मी से राहत मिलने वाली बारिश है। प्रिय मित्र आनंद जी को नमस्कार, आपका जो मनोरंजन करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। गणेश प्रसाद हुसदार काठमांडू से जुड़े हैं, क्या बात है सर, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं, दौलत विरासत बन सकती है लेकिन चरित्र ही पहचान बनता है, पद समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा पीढ़ियों तक याद रहती है। इसी विचार के साथ आपको प्रणाम, आप सदैव इंसानी जीवन की सफलता की ओर अग्रसर रहें, सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद को सुनते रहिए, क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जी मैं बढ़िया हूँ, मुंबई में क्या हाल चाल है जरा आप मुझे ये बताएं, मैंने सुना है वहाँ काफी झमाझम बारिश हो रही है, इनफैक्ट काफी लोग परेशान भी हैं। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? हाय मेरा नाम पल्लवी है, गुड मॉर्निंग पल्लवी। पल्लवी जी लिखती हैं, आनंद जी देखिए आपको ना मुझे ऐसा लगता है कि तरीका तो है ही डिफरेंट, लेकिन आपको लाइफ जीने का मजा भी बहुत अच्छे से आता है। हाँ जी बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि लाइफ जीने का मजा हर किसी को आना चाहिए, एक लाइफ मिली है तो आपको सब कुछ वो करना चाहिए जो आप सोचती हैं, जो आप मैनिफेस्ट करती हैं या करते हैं, जो आपने सोचा है वो डेफिनेटली करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए अच्छा जितना हो सकता है ना अपनी तरफ से करो, शुक्राना करो, लोगों का थैंक्स करना सीखो, लोगों से ना गिले शिकवे कम रखो, शिकायतें कम रखो, जितना हो सकता है ना अपनी तरफ से अपने मन को बढ़िया रखो यार, सामने वाले को जो सोचना है सोचे, बिकॉज वो उसकी चॉइस है, आपने अच्छा सोचना है ये आपकी जिम्मेदारी है ना, तो अपने आप को अच्छा सोचने पर मजबूर मत कीजिए, अपने आप को अच्छा सोचने दीजिए। हाँ मजबूरी से कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं यार मुझे सबके साथ अच्छा करना है, मुझे सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, तो आप डेफिनेटली फिर वो आपका नेचर जो है ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उस तरफ, है ना, तो मजबूरी से कोई काम मत करो, जबरदस्ती से मत करो, जबरदस्त होके करो, मेरा ऐसा मानना है यार, है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है मेरे पास प्रेम साहू का, लिखते हैं हाय आनंद गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे हैं आप? प्रेम जी मैं बहुत ही अच्छा हूं, ये बसंत विहार से मुझे मैसेज मिला है, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो, आपके गाने बहुत प्यारे होते हैं आनंद, सुन के सुबह अच्छी हो जाती है, अरे वाह थैंक यू सो मच यार। एक मैसेज और आ गया, हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है आपके? मेरे हालचाल बहुत बढ़िया यार, आई एम एब्सोल्युटली डूइंग गुड, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, हेलो हेलो कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ जी, मैं बढ़िया हूँ, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मौसम तो है ही अच्छा, इस मौसम में तो सच बता रहा हूँ यार मजा ही आ जाता है, इतने प्यारे प्यारे गाने आप चलाते हो आनंद जी, और ऊपर से मौसम इतना अच्छा होता है तो मजा आता है आपका शो सुनकर, एंड सुबह सुबह सच में आपने जो है कमाल कर दिया है यार। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लग रहा है। एक मैसेज किसका पहुंचा है, इन्होंने नाम लिखा है टिंकू। हाय गुड मॉर्निंग टिंकू जी, ये लिखते हैं सुबह सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आनंद जी काशीपुर जा रहा हूँ एंड आपका रेडियो एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और ये लिख रही है हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, इन्होंने ऐसा लिखा है, भाई बारिश का आनंद लो यार।
1: बेखुदी में बहकने लगे हैं ये मदहोशियों की घड़ी है, बरसात के दिन आए।
0: ये लो भैया, मैंने जो है आपके माहौल को और खूबसूरत बना दिया इस गाने के साथ, सुनो इसी को अब। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, मौसम इतना औसम है तो ये गाना तो बनता है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी भी कराता हूँ यार, मेरा गला जो है अब सूखने लगा है, तो थोड़ी सी पानी की रिक्वायरमेंट मुझे भी लग रही है। आप ब्रेकफास्ट करो, साथ में इस गाने को सुनो, वॉल्यूम बढ़ाओ और आनंद को मैसेज करते जाओ। गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। हाय दयान आनंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
7: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
6: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: कॉल 9045912348।
8: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

11th of July 2026 सैटरडे मॉर्निंग आते हैं आप। देखिए 11 जुलाई हो गया है, पता नहीं चल रहा है बॉस। और आज का दिन बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का दिन डेडिकेटेड है, समर्पित है उस चीज को जिस पे बात करना तो बनता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं गुड मॉर्निंग है, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 11 जुलाई है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिन का मकसद सिर्फ बढ़ती आबादी की बात करना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सशक्तिकरण और परिवार नियोजन मिलकर बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं। श्रोताओं आपको बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। श्रोताओं इस दिन का उद्देश्य होता है बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। बढ़ती आबादी का असर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, भोजन, आवास और पर्यावरण पर भी पड़ता है। केवल जनसंख्या बढ़ाना ही समस्या नहीं है, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप मुझे बताइए, आपके अनुसार बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा असर किस चीज पर पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा असर किस चीज पर पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, शिक्षा पर या फिर आजकल जो इतनी सारी चीजें हमारे आसपास देख रहे हैं हम, जो बड़ी अलग सी चीजें हो रही हैं, किस चीज पे आपको लगता है कि आपको आनंद? मुझे लगता है कि जो मेरे अनुसार ये जो बढ़ती जनसंख्या है, इसका असर सबसे बड़ा इस चीज पर पड़ रहा है। आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9837898996, या आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं।

हाँ जी, तो देखिए फिलहाल 9:09 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ हैं आप और ऐसे ही आपको और मेरे साथ बना रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आप भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका 9837896896। I want to ask you, this is very simple question. आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इस पे ढेर सारी बात होगी। आपके अनुसार बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा असर किस चीज पे पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? ट्रैफिक जाम, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पानी की कमी, आवास, पर्यावरण, क्या लगता है? बहुत सारे ऑप्शन, सो मेनी ऑप्शंस। आपको क्या लगता है किस चीज पे पड़ रहा है सबसे ज्यादा असर, ये जो बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे ज्यादा असर किस चीज पे देखने को मिल रहा है? व्हाट्सएप करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं आनंद को, आई विल बी राइट बैक।

0: Sorry, Ma!
1: Mamamaka! Nalaya ka beta!
2: Hanji, good morning, namaskaram, kya hal chal?
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

मैं आनंद को वही गुड मॉर्निंग। ये है सैटरडे की सुबह, 11 जुलाई की मॉर्निंग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तो डेली आपके शो पर आते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए आपके छोटे से रेडियो सेट पर। गाना बहुत अच्छा निकाल रहा हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को सुन रहे हैं। शायद आप इसको मेरे शो में, ऐसा भी हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आप। जिन लोगों ने भी रेडियो ट्यून इन किया, ये गाना आपको फ्लैश बैक में ले जाएगा। आप सभी का खुली दिल और खुली बाहों के साथ वेलकम बैक है जी। चलो इस गाने को सुनते हैं। चलिए मैं देख कर आता हूँ, शायद किसी से मेल हो जाए।

0: देखो आपने ना इस गाने को मैनिफेस्ट नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हालचाल है? आप आनंद को सुन रहे हैं, ढेर सारे मैसेज आ गए यार, कंग्रेचुलेशन इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। और आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को, उसमें हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था आपके हिसाब से ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ रही है इसका असर सबसे ज्यादा किस चीज पे पड़ रहा है, आपको क्या लगता है, ये बताने के लिए शंकर जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं आज की सुबह। शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? गुड नमस्ते। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं सर आप? जी जी, शंकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसे हाल चाल है आपके? नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: जी जी, बताएं अपने बारे में, कहां से फोन किया है इस वक्त आपने?
1: मेरे साथ प्रकाश नगर, लाइन पार प्रकाश नगर।
0: अच्छा, लाइन पार प्रकाश नगर से फोन करें। जी जी, शंकर लाल जी सब बढ़िया चल रहा है?
1: शंकर लाल यादव है।
0: जी जी, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
1: जी जी, सब बढ़िया निकल रहा है, मेरी आवाज दिखाई नहीं देता।
0: ओहो,
1: एक ही कोठरी में पड़ा रहता हूँ और मैं आपका प्रोग्राम पूरा सुनता हूँ, सुबह से भजन सुनता हूँ पहले तो 6 बजे से।
0: अच्छा
1: जी, फिर उसके बाद भजन खत्म होते फिर समाचार सुनता हूँ आपको, फिर गुड मॉर्निंग सुनता हूँ आपकी।
0: अरे
1: आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: अरे शंकर लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप दुनिया तो नहीं देख पा रहे लेकिन आप जो है हमारे प्रोग्राम के जरिए कुछ तो इमेजिन कर पा रहे, कुछ तो अच्छा फील कर पा रहे।
1: इसी बहाने टाइम भी लग जाता मेरा।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है सर, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो से इतनी मोहब्बत करते हैं।
1: जी, बहुत मैं आपका रात का प्रोग्राम सुनता हूँ। राजी मैंने दो कॉल आखिर सर को भी करी थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: कॉल तो गई थी दोनों और कॉल उठी नहीं थी।
0: ओहो हो हो, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा शंकर लाल जी, आपको क्या लगता है आज विश्व जनसंख्या दिवस पे जो?
1: जी जी जी, जी, जी। पहली बात तो ये है कि बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है, शिक्षा के लिए भी शिक्षा नहीं होती भरपूर, बच्चों की बच्चे ज्यादा होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है तो शिक्षा सही से मतलब हो पाती है, इसलिए बच्चे कम से कम होने चाहिए, एक दो बच्चे होने चाहिए तो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा सुविधा होगी।
0: और किस चीज पे इसका असर पड़ता है, आपको क्या लगता है? आपने रोजगार की बात भी कही शायद।
1: जी, रोजगार में ये नौकरी नहीं मिलती, ज्यादा बच्चों से रोजगार में नौकरी नहीं मिल सकती और सारा काम नहीं हो सकते है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ये है कि हमारे पास में दो पौधे पौधे हैं, ये पढ़ाई में अच्छे निकल रहा है, शादी कर ले, एक लड़की तो फर्स्ट आती है मेरी।
0: चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी जी,
1: एक हफ्ते साइंस अकेडमी में पढ़ता, फर्स्ट या सेकंड आता।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया
1: जी। दोनों बच्चे

0: मतलब कॉफी भी बहुत अच्छी हो गई उनके पास में।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारी शुभकामनाएं शंकर लाल जी, बहुत अच्छा लगा आपने सुबह सुबह हमें फोन किया, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, मेरा नाम प्रतीक है, हाउ आर यू भाई, आपका शो सुन के बड़ा मजा आता है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है, माय नेम इज नीलिमा। हाय नीलिमा, गुड मॉर्निंग। नीलिमा मुझे लिखती है, आनंद जी मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि चीजों का ख्याल रखना है आपको, स्पेशली आपको अपने आसपास की ये जो चीजें आजकल चल रही है इसका ज्यादा ख्याल रखना है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, और भी ढेर सारी चीजें जैसे आपने बात करी उन चीजों पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा है आपने, मुझे भी ऐसा लगता है। एंड छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, बट यही चीजें होती हैं जो हमारी चीजों को थोड़ा सा अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करती है। आपसे भी हम पूछ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पे, है ना। और बाकी आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, सच में सच अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत प्यारे प्यारे संदेश आपके आ रहे हैं। 9:21 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप आनंद के साथ हैं, अभी लौट कर आते हैं तो कुछ खास खबरें बताते हैं, आसपास में क्या चल रहा है, मुरादाबाद में क्या चल रहा है, सारी कड़क अपडेट आपको मिलेंगी। आने वाला गाना मीका सिंह की आवाज जब भी मैट से निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, डेफिनेटली इस गाने को सुनेंगे। और आज की डेट में बड़ी सारी शादियां भी हैं, आज 11 जुलाई है, बहुत सारी शादियां चल रही हैं आज, उस पर डेफिनेटली चर्चा करेंगे। कुछ मैसेज भी आए हैं मेरे पास, किसी के दोस्त की शादी है तो किसी के दोस्त का बर्थडे है, डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद जल्दी से मैं लौट कर आ रहा हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पर। भाजी तारीफ करो यार मेरी।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
9: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
11: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने, ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: एक भी मौजा नहीं मिलता है टाइम पे। जब भी कहीं जा रहा होता हूँ ना, तभी सारे मौजे गायब हो जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई साहब, ये मेरी लाइफ में पता नहीं क्या कोई श्राप लगा हुआ है मुझे। हेलो, हाई, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल चाल है आप सुन रहे आनंद को। 9:28 का समय हो गया है। 11 जुलाई की तारीख है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बात कर रहे हैं यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पे। और हमने आपसे सवाल जवाब भी किए, ढेर सारे फोन आ रहे हैं। मेरे पास गिनी का कॉल आया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, एंड इसके अलावा हमारे पास पूजा जी का फोन आया। बट एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि यार सारे लोग बिजी हैं, सब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। एक मैम ने मुझे बोला, यार तू देख सुबह सुबह कॉल करने के लिए तो मत ही कहा, हम कर ही नहीं पाते, व्हाट्सएप भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। देखो आनंद, वेल थैंक यू सो मच फॉर यू शोइंग यू लव यार, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं इसीलिए मैं कम कॉल वाले सेगमेंट रखता हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज सबका इतना ज्यादा हेक्टिक होता है, सबका ज्यादा इतना भाग दौड़ वाला टाइम होता है ना मॉर्निंग में, मैं क्या बताऊँ, इवन मेरा खुद का होता है यार। चलो फिलहाल कुछ कड़क अपडेट की बात करते हैं। तो भैया यूपी में मौसम मेहरबान है एक बार फिर से। बीते 4-5 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है, और ये सिलसिला अगले कई दिनों तक जो है जारी रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज माने तो शनिवार यानी 11 जुलाई को भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई है, इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है आज। और आपको बता दें भैया, जो मॉनसून है वो आज भी सक्रिय रहेगा, यानी कि आज भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है, यानी कि आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी अगर मौसम अच्छा दिख रहा है तो कभी आपको लग रहा हो कि बारिश तो होगी नहीं यार, चलते हैं ना बाहर, देखते भागते आ रहे हो। और आजकल जो है आपको पता है ना, दिक्कतें भी हो रही हैं। दिक्कतें ये हो रही है कि भैया एकदम से जो है ना सर्दी जुकाम बुखार गला खराब ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। तो इसीलिए अपना खास ख्याल रखिए, ये बारिश में अगर आप भीगोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतों का फिर आपको सामना करना पड़े, और हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली को जरा सा भी कोई इशू हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। हाँ जी, अब रिजर्वेशन चार्ट बनाने के बाद यदि ट्रेन में सीट खाली है तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 15 मिनट तक जो है, मतलब 15 मिनट पहले तक कंफर्म टिकट बुक किया जा सकेगा। ये सुविधा वंदे भारत समेत सभी अंतरिक्ष ट्रेनों पर लागू होगी। आपको बता दें यात्री IRCTC वेबसाइट यानी कि रेल कनेक्ट ऐप या PRS काउंटर से टिकट बुक करा सकते हैं। इससे यात्रियों के लिए जो है साथ ही साथ रेलवे को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज मैंने आपको फटाफट बता दी भैया। और एक चीज और बताते चलें, देखिए वो ये है कि देखिए अगर आप इसमें टिकट बुक कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, रेल कनेक्ट या फिर ऐप डाउनलोड करके भी आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं। सिस्टम से पहले सीट उपलब्धता दिखाएगा और सीट खाली होने पर ही कन्फर्म टिकट जारी किया जाएगा। आपको बताते चलें किससे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये जो नियम है वो मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस ट्रिप या अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। चार्ट बनने के बाद खाली सीट यात्रियों को मिल सकेगी, जिससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। यात्रा से पहले यात्री इन बातों का डेफिनेटली ध्यान रखें, टिकट बुक करने से पहले सीट उपलब्धता जरूर जांच लें, समय से स्टेशन पहुंचें और वैध पहचान पत्र साथ ही साथ जो है जो भी अपने जरूरी दस्तावेज हो अपने साथ रखें। टिकट केवल IRCTC या रेलवे की अतिरिक्त माध्यमों से ही बुक करें ताकि सुरक्षित और सही तरीके से यात्रा आप कर सकें। कई बार होता है ना, व्हाट्सएप पे अपना फोटो रख लेते हैं कि चलो भाई व्हाट्सएप पे दिखा देंगे, तो आपको बता दें व्हाट्सएप पर आया टिकट दिखाकर अब आप नहीं कर पाएंगे यात्रा। हाँ जी, अगर आप व्हाट्सएप पर टिकट दिखा रहे हैं तो ये डिजिटल टिकट को लेकर जो है अभी एक नया बदलाव किया गया है भाई साहब, कि अब आप जो है व्हाट्सएप वाले टिकट को तो नहीं दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर शेयर किया गया टिकट या स्क्रीनशॉट या फोटो या PDF टिकट चेकिंग के दौरान मान्य नहीं होगा यात्री के लिए। केवल आपको या तो आप इसके ऐप के जरिए टिकट करें या फिर ओरिजिनल डिजिटल टिकट आपका वैध माना जाएगा जो आपके पास होगा, आपको उस टिकट को अपने पास रखना होगा। यानी कि अब जो ऑनलाइन हम लोग कई बार होता है ना ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास टिकट, हमने व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर क्लिक कर ली, पर अब वो वैलिड नहीं होगा, तो आप ध्यान रखें इस बात का। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपकी शेयर का स्टेशन ऑफ द नेशन। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:32, आरजे आनंद के साथ हैं आप। लगातार आपके साथ ढेर सारी बातचीत चल रही है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, ढेर सारे संदेश भी हमारे पास पहुंच रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे मुरादाबाद शहर के बारे में। हमारे पास मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं। लिखते हैं आपको हमारी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग जी। ये लिखते हैं सुप्रभात, शब्द और दिमाग से दुनिया जी जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। सही कहा बिल्कुल आपने, बिल्कुल जी एब्सोल्युटली सही कहा आपने। बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं, इधर तो दो दिन से बरसात बंद है, धूप निकल रही है। आनंद भाई हम लोग बरसात से परेशान हो गए थे, इसीलिए जो है अब हमने आपके शहर में बरसात भेज दी। ऑल राइट, मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है वैसे भी। हमारे पास हमारे प्यारे रेगुलर लिसनर जुड़े हैं, जोन रोजी पलवली सहारनपुर से लिखते हैं, समय सब कुछ बदल देता है, सिर्फ सब्र की जरूरत होती है। आई एग्री विद यू 101%। चलिए कुछ गाने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, एड ब्रेक छोटे से हैं, इसके बाद जल्दी से लौट कर आ रहे हैं, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन गाना आएगा।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, दिल ही ऐसा होता है जो मानता ही नहीं है, और लेकिन जब तक आप आनंद को ना सुनो आपका दिल नहीं मानता, मेरे को पता है। अरे हमें सब पता है मेरे भाई। गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये कम्युनिटी रेडियो है जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। 11th ऑफ जुलाई 2026 आज का सवाल बहुत सिंपल था यार मेरा, एंड इस पे ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंचे हैं। एक मैसेज आया है, आनंद जी आपका जो सवाल है उसके अनुसार मुझे लगता है कि बढ़ती जनसंख्या का असर जो है किस चीज पर पड़ रहा है, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन नौकरियां उतनी ज्यादा नहीं है, तो इस चीज पे इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाई, माई नेम इज रीति। ऑलराइट, एक मैसेज और आया है, ये मुझे कटघर से मैसेज मिल रहा है। गुड मॉर्निंग जी, आनंद जी आपके क्वेश्चन का आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ना ट्रैफिक और प्रदूषण की है। जहां पहले 10 मिनट लगते थे अब वहीं पहुंचने में पूरे 30 मिनट लग जाते हैं। बात तो सही बोली है पूजा जी आपने। एक मैसेज और आया है मेरे पास रामगंगा बिहार से, इनका नाम है पुनीत, ये मुझे लिखते हैं, आनंद जी मेरे हिसाब से आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पानी की कमी आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हम सभी को जो है पानी बचाना है और उसकी आदत भी हमें डालनी चाहिए। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर गायत्री नगर से, इन्होंने लिखा है अस्पताल और स्कूलों में भीड़ लगातार बढ़ रही है, अच्छी सुविधाओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आनंद जी थैंक यू सो मच हमें ये मैसेज करने के लिए। इन्होंने अपना नाम प्रीति लिखा है, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और आया है राजेश जी का, ये लिखते हैं, आनंद जी जनसंख्या बढ़ना अपने आप में समस्या नहीं है लेकिन अगर शिक्षा रोज

रोजगार और संसाधनों का सही योजना हो जाए तो मुश्किलें जो है अब थोड़ी इजी हो सकती है, लेकिन ये योजना ही सही नहीं है तो चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड होंगी ही। बिल्कुल श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लिसनर्स का, आपने अपनी अपनी राय रखी व्हाट्सएप के जरिए, आप लोगों ने मैसेज किए, ढेर सारे कॉल्स भी आए बिंदास मॉर्निंग में, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड आप लोग ऐसे ही जब अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। थैंक यू सो मच अपनी प्यारी राय रखने के लिए। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, हर साल 11 जुलाई को हम इसको मनाते हैं। ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे व्हाट्सएप पहुंचाने के लिए। फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:41। एक अच्छा सा गाना आएगा आपके लिए, जो ये गाना है ना भाई, दे दनादन से निकाला है मैंने, दे दनादन गोला ये गाना है, बहुत ही अच्छा, आप सुनोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, कुछ गाने इतने बढ़िया होते हैं ना जिनको सुनकर सच में मजा आ जाता है यार। उन्हीं में से गाना मैं आज की सुबह आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा था यार, मेरे पास एक कड़क क्वेश्चन है, अगर आप मुझे इसका जवाब पहुंचाओगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे को व्हाट्सएप करना होगा। तो अगर आप व्हाट्सएप करने के लिए रेडी हैं तो नंबर आपको पता ही है, क्या करना है आपने, थोड़ा सा इंतजार करना है, एक सवाल आपसे पूछूंगा।

0: थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास पहुंच गया संदेश, लगातार आपके पहुंच रहे हैं। एंड ये गाना खूबसूरत है भाई, सुन के मजा आएगा। ऋचा शर्मा की आवाज है एंड और भी एक कलाकार की आवाज है, जरूर आपको सुनवाऊंगा। लेकिन
1: नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सुन रहे हैं अपने शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है FM मुरादाबाद 89.6 फ्रिक्वेंसी पर चलता है। इसका कहना है कि इसको बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, और जब बजाओगे गुनगुनाओगे तभी मुस्कुराओगे। प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग और आरजे आनंद, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, कैकेयी राम के राज में रहती थी फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहिए और बने रहिए आरजे आनंद के साथ FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, भेजते रहो अच्छे अच्छे वॉइस नोट मैसेज नंबर 98-378-96-896। राधे राधे।
0: थैंक यू सो मच भूपी भाई, आपको भी राधे राधे इतना प्यारा वॉइस नोट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, मैं फटाफट लौट कर आता हूँ अभी की अभी, और उसके बाद फिर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, तो बस आप इंतजार कीजिए फिल है उससे पहले। लेकिन अभी फिलहाल एक ट्रैक आनंद लेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सैटरडे की सुबह है, शनिवार का दिन है, बहुत ही प्यारा सा आनंद राज आनंद की आवाज साथ में ऋचा शर्मा देंगी सावेद साथ। इसमें ऋचा जी की बहुत ही प्यारी आवाज है यार। जावेद अख्तर जी ने लिखा इस ट्रैक को, प्रीतम का म्यूजिक है ये जो आवाज सुन रही है आनंद की है।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
0: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: डेफिनेटली ये ब्लॉकबस्टर आप तक पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले मेरा आज का कड़क सवाल सुन लो यार, बहुत ही स्पेशल है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है आज सैटरडे की मॉर्निंग ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है। जरा सुनो, बहुत ही प्यारा डायलॉग है, आई एम श्योर आपने इसको कई बार सुना भी होगा और शायद ये मूवी भी देखी होगी। बहुत प्यारी फिल्म है, जरा बताओ कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
1: प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
0: जरा बताओ मुझे मैसेज करके, ये थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है। आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ डायलॉग आज की सुबह, ये कौन सी फिल्म से लिया है मैंने।
1: प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
0: चलिए मैसेज करिए मुझे फटाफट से, इस सैटरडे की मॉर्निंग में आनंद के साथ हैं आप, फटाफट आप मुझे जवाब देंगे, देखते हैं कौन बनेगा आज की सुबह हमारे शो का सुपरस्टार।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: देखो भैया बात ऐसी है, अब जो है हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी शुरू हो गई है। 30 जुलाई से जो है ये यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन आपको एक चीज और बताते चलें, सावन की शुरुआत भी 30 जुलाई से ही होने वाली है और बाकी आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आज भी एकादशी है। बहुत से लोग फास्ट रखते हैं भाई, अगर आपने रखा है तो बहुत बढ़िया। 9:56 हो रहे हैं, 11 जुलाई की तारीख है। आपको बता दें इस बार जो है ना कांवड़ मेले में बहुत सारी चीजों पर बैन लगाया जा सकता है, ये ऐसी बात चल रही है। 30 जुलाई को जो है शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरह इस बार अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए बहुत सारे कई ऐसे अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे मेले में त्रिशूल, तलवार, डंडे, बेसबॉल बैट और ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिन पर जो है बताया जा रहा है कि इस बार रोक लगाई जा सकती है। इनफैक्ट तेज आवाजों में जो डीजे की साउंड होती है उस पर भी बताया जा रहा है कि शायद इस बार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये जो बड़े बड़े डीजे चीजें निकाले जाते हैं ना उस पर भी बताया जा रहा है कि भैया थोड़ी सी जो है इस बार एहतियात बरतने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि भैया जो बड़े बड़े बहुत कई फिट की ऊंची डीजे होते हैं जिसकी वजह से जो तार होते हैं बिजली के उनसे बहुत कई बार बहुत ज्यादा हादसे भी हो जाते हैं, तो इनसे भी बच सकें श्रद्धालु, इसीलिए बहुत सारे पुख्ता और कड़क इंतजाम किए जा रहे हैं। और बाकी मेलों में जो है बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि आपकी जो ये यात्रा है, जो आपकी ये आपका जो एक निश्चय है कि भैया हमें पहुंचना है और हमें जल लेकर आना है, कांवड़ लेकर आनी है, वो सुरक्षित अपने घर को लौट सके, इसीलिए बहुत सारे जो है इंतजाम किए जा रहे हैं हरिद्वार प्रशासन पुलिस की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी। तो भैया आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मुरादाबाद के अंदर भी बहुत धाकड़ तरीके से जो है सावन सेलिब्रेट किया जाता है और सावन में जो कांवड़ यात्रा है यहाँ पर भी बड़ी धूमधाम के साथ होती है। चलिए दोस्तों फिलहाल 9:58 हो गए हैं स्टेशन की घड़ी में और अभी हमने आपसे एक बड़ा सिंपल डायलॉग भी पूछा है। आपसे हम कह भी रहे हैं कि भैया आप भी हमें इसका जवाब पहुंचा सकते हैं। डायलॉग कौन सी फिल्म का है?
4: प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
5: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
3: मैसेज करके आप बता सकते हैं मुझे जो प्यार से डर लगने वाली बात है आखिर कौन से फिल्म में कही गई है, आप जरूर बताइएगा हमें 9837896896 पे। अभी आते हैं लौट के फिर बताते हैं क्या है सही जवाब।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: वही गुड मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हमारे स्टेशन की घड़ी में सुबह के 10:04 हुए हैं। ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंचे हैं। आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही सिंपल डायलॉग पूछा था। मैंने कहा था आप मुझे मैसेज करके बताइएगा ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर मूवी, एंड आई एम श्योर आपको सलमान खान पाजी का वो चेहरा याद आ गया होगा, एकदम स्टाइल वाला जो चश्मा उन्होंने लगाया था, वो क्या थे चुलबुल पांडे जी?
1: प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते
0: हैं। चश्मा बहुत पॉपुलर था यार।
2: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब,
0: यस
2: प्यार से लगता है।
0: कौन से फिल्म का डायलॉग था आज की सुबह, यही मैंने आपसे पूछा था। सैटरडे की सुबह है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद को सुन रहे हैं, एंड इतने सारे व्हाट्सएप आप लोगों ने किए हैं ना, मजा आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई नो दैट कि मुझे सिर्फ लोग भारत में नहीं सुनते हैं, भारत के बाहर भी ढेर सारे लोग हमें सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें इंटरनेशनली भी सुनते हैं हमारे आपके जरिए। अगर आपने आप डाउनलोड की नहीं किए तो कर सकते हैं आप प्ले स्टोर पे जाके, FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिलते हैं। अभी बात करते हैं भैया कुछ लोगों की जिनका आज बर्थडे है और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। सबसे पहले तो आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं नैन्सी जी, नैन्सी एंड अर्पित जी। यस, अर्पित वर्मा और नैन्सी वर्मा जी की आज शादी की सालगिरह है, सो कंग्रेचुलेशन आप दोनों को। ये हमारे बड़े अच्छे रेगुलर रेडियो लिसनर भी हैं, अलका वर्मा जी भी हमें सुन रही हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ी रहती हैं प्रोग्राम्स में, बहुत अच्छा लगता है। एंड इस वक्त वो लोग इंडिया में तो नहीं है, जापान में मुझे सुन रहे हैं, तो आपको हमारे सभी इंडियंस की तरफ से कंग्रेचुलेशन। आप लोग अभी तो जापान में, एंड आई एम श्योर वहां पे तो टाइम भी चेंज हो रहा होगा, फिलहाल आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अर्पित भाई एंड एनसी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, FM मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से शादी की सालगिरह आप दोनों को मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। आप दोनों को मेरी तरफ से जाएगा ये ब्यूटीफुल ट्रैक, और साथ में आदित्य भी सुन रहे हैं, उनको भी हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप? हम भारतीयों का दिल सच में यार बड़ा दिल ना एकदम वड्डा वाला होता है, हम कहीं भी चले जाएं हम कभी भी ना रेडियो सुनना नहीं भूलते हैं ना, अपना जो मुरादाबाद का रेडियो, जो मुरादाबाद की शान है, जो मुरादाबाद का ये प्रेम है, इसकी बात ही अलग होती है यार, है ना। चलो एक मैसेज मेरे पास और पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पिंकी है और इनका आज बर्थडे है, सो इनको हैप्पी बर्थडे, बाकी आप दोनों को कंग्रेचुलेशन, और ये मेरी तरफ से प्यारा सा गाना हैप्पी मैरिड लाइफ, ऑल द बेस्ट।

0: बेकरारी तो हमारी भी बढ़ती जा रही है। Once upon a time in Mumbai से गाना सुन रहे थे आप। Beautiful track, मोहित चौहान की आवाज, विक्रम चक्रवर्ती का म्यूजिक। और आज की सुबह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की मॉर्निंग हमारे शो की लकी कॉलर, जो देंगी हमें सही जवाब। भैया हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया। कौन जुड़ी है लाइन पे? हाय हेलो गुड मॉर्निंग।
1: हेलो गुड मॉर्निंग सर
0: जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से जुड़ी हैं आप इस वक्त हमारे साथ?
1: मैं अलीशा हूँ, मुरादाबाद से जुड़ी हूँ।
0: अरे वाह, अलीशा मुरादाबाद में कहाँ रहती हैं ये बताइए? अच्छा, ऑल राइट, ओके ओके। पढ़ाई कम्प्लीट होगी अलीशा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। और रेडियो से कब से जुड़े हो?
1: तो
0: ओह वाह, वेरी नाइस। क्या अच्छा लगता है आपको एफएम मुरादाबाद पे सुनना?
1: सर आपका प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लगता है मुझे।
0: ओके मैम, आपसे रिक्वेस्ट है ना अलीशा जी, रेडियो से थोड़ी दूरी बना लें या रेडियो को थोड़ा कम कर दें ताकि मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि वो फिर साउंड रिपीट होगा, आवाज क्लियरिटी नहीं हो पाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अलीशा, जो मैंने आज डायलॉग प्ले किया था वो डायलॉग कौन से फिल्म का है?
1: सलमान।
0: पक्का पक्का पक्का, ये जवाब लॉक कर दूं मैं?
1: यस सर।
0: चलो बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां आपके लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मूवी देखी है?
1: यस सर देखिए।
0: अच्छा, कितनी बार देखी है? चलो ये बताओ अभी सही सही।
1: काफी बार देखी है।
0: ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छी लगती है आपको ये फिल्म? बहुत बढ़िया, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया अलीशा, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बाकी और भी ढेर सारे शोज पूरे दिन आते हैं, आप जरूर सुनिए, हर शो की अपनी एक स्पेशलिटी है, अपने एक शो का अपना एक मजा है ना? जी, कुछ कहना चाहते हो अलीशा जाते जाते? तमाम लोग तुम्हें सुन रहे हैं, आज की सुबह आप सुपर स्टार बन गई हो हमारे शो की।
1: मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपकी आवाज, आपके हर चीज बहुत पसंद आती है हम लोगों को।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको मेरे शो की अगर मैं बात करूँ तो?
1: सर आप अच्छे अच्छे न्यूज देते हो, सॉन्ग देते हो, हर मौसम मतलब जैसा मौसम होता है उसे मतलब उस हिसाब से सॉन्ग आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके ओके ओके, मतलब अब मॉर्निंग बिंदास हो जाती है ऐसा?
1: जी मॉर्निंग
0: हो जाती है। चलो थैंक यू सो मच, आपने ये बात बोल के मेरा 1 किलो खून बढ़ा दिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी? जल्दी से, मेरा समय जाने का हो रहा है। तमाम मुरादाबाद वाले आपकी आवाज सुन रहे हैं, कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहते हो?
1: हाँ,
0: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा अलीशा, ध्यान रखो अपना एंड ऑल द बेस्ट, आज की सुबह आप जुड़ती हैं, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू।
1: सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरा 6 महीने से रेडियो बंद था, मतलब खराब हो चुका था हमारा रेडियो, अब हमारे जीजू जी ने ठीक करवाया है, तो मैंने अब राज सर को नहीं सुन पा रहे हैं।
0: ओके, राज, एक्चुअली राज ने ड्रॉप कर दिया है मुरादाबाद रेडियो, तो अभी राज को तो आप नहीं सुन पाओगे अब। और हाँ जी हाँ जी, और नए नए आरजेस अभी आने वाले हैं, आप उनको जरूर सुनना, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय। ओके, अरे क्या कहा आपने?
1: आप चेंज मत होना, तो भी अभी नहीं आए थे रेडियो पर।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं आता रहूंगा, डोंट वरी, आपका प्यार है तो जरूर आते रहेंगे। चलो बाय बाय अलीशा।

0: चलिए गाइस, फिलहाल जाने का समय हो गया है। कोई और है जो आपका एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आ गई है। ऑफकोर्स आप समझ जाते हैं, सैटरडे को ही बंदी आती है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये नॉनेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े थे गलत जवाब के साथ। यार मुझे मारो, क्या ही हो रहा है। गीता कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में बबली अंजान, वेरी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं एंड सभी को सही जवाब भी पहुंचा रहे हैं और गुड मॉर्निंग भी दे रहे हैं, थैंक यू। इसके अलावा मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं यार आज की सुबह। दबंग फिल्म का डायलॉग ही बीबी राधिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं सही जवाब के साथ। गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है, हेलो आनंद जी, आपकी फिल्म का नाम था दबंग। मेरी फिल्म नहीं थी वो, मेरे सलमान खान फेवरेट हीरो की फिल्म थी। बबलू जी थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ कौन जुड़ी है सही जवाब के साथ? अलका जी का एक वॉइस नोट आ गया है हर बार की तरह, इस बार भी जरा सुनते हैं।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे जी,
1: और आज योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनने वालों को।
0: जी जी।
1: ये आपने जो डायलॉग चलाया था ये दबंग मूवी से है, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माया गया
0: जी, जी जी जी।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी, बहुत।
1: आज मैं काफी देर से जुड़ पाई क्योंकि पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया था,
0: ओके ओके,
1: इसलिए अभी बस कनेक्ट किया हुआ है।
0: चलिए थैंक यू सो मच, आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी के लिए तालियां। फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है, 10:16 हो रहे हैं बॉस। ये विक्की सागर जी जुड़ते हैं, हेलो रेडियो वाला आनंद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सही जवाब के साथ भी जुड़ रहे हैं, थैंक यू। एंड ये डीके अरोड़ा चंदन नगर से जुड़े थे सही जवाब के साथ। भूपी शर्मा जी ने सही जवाब दिया। रिजवान खान साहब सही जवाब के साथ जुड़े। ललिता कश्यप जी जुड़ गई सही जवाब के साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं और गर्मा गर्म पकौड़ी भी भेज रही हैं। रिहाना जुड़ी है मेरे साथ, गुड मॉर्निंग। राजा कश्यप जी जुड़े हैं चौराहा गली से, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग। सहारनपुर से जोन रोजी पल प्लीज, आनंद जी जय श्री राम। दुर्गेश सैनी जुड़ चुके हैं। बाकी नीतू सिंह लाइन पर ढक्का से। मित्र जी नमस्ते, नमस्ते जी आपको भी। गणेश प्रसाद जी जुड़े हैं। चलिए गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। नहीं यार कल नहीं मिलेंगे, कल तो संडे है, मारो मुझे। संडे को भी आने का प्लान होता है मेरा कभी कभी। गुड मॉर्निंग आनंद सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, दबंग मूवी का डायलॉग था ये। थैंक यू सो मच नीतू जी, लाइन पार से जुड़ रही हैं टेक्स्ट मैसेज के जरिए। दबंग किसी ने लिख के भेजा है, मैं दबंग हूँ या मूवी का नाम ये नहीं बताया आपने। हेलो अमरोहा से जुड़ रहे हैं नेहा जी, गुड मॉर्निंग लिखती हैं। हाय नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये लिखती हैं चाय पकौड़े बन रहे हैं, आप आ जाइए। बिल्कुल जी आप भिजवा दीजिए, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। थैंक यू गाइस, चलो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको मंडे की सुबह, आप तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए। बाय बाय, हैव अ फैबुलस वीकेंड, साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग एंड ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, बाय।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, AKCC.NABARD.ORG।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC, साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
5: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, गुड मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 10:27 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज की तारीख यानी कि 11 जुलाई अपने आप में बहुत ज्यादा और बेहद खास है। आज का दिन यानी कि आज है योगिनी एकादशी, जो भगवान हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धालु और सच्चे मन से व्रत पूजा और दान करने की जो दान करते हैं उनको भगवान की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है। कहते हैं एकादशी केवल भोजन का व्रत नहीं बल्कि मन वचन और व्यवहार को संयम रखने का भी अवसर है। अगर व्रत ना भी रख पाए तो किसी जरूरतमंद की मदद करे, मधुर वाणी बोले और भगवान विष्णु का स्मरण करे, यही इस दिन का सबसे सुंदर संदेश है श्रोताओं। और आज की तारीख बेहद खास है और गुड वाली आप सभी को राधे राधे। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का वेदर भी मजेदार वाला है ना। जब वेदर मस्त हो, मजेदार हो तो सफर अपने आप सुनहरा हो जाता है। और आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज भी आ गए हैं। क्या बात है जी। तो आज आप जो भी गाना सुनना चाहते हैं, बेधड़क बिंदास होकर किसी का नाम मेंशन करना चाहते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हर आप एक एक चीज बता सकते हैं, क्योंकि आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई हैं आपके दिल की बातें सुनने के लिए श्रोताओं। और एक अपनी पसंद का, क्योंकि आज योगिनी एकादशी है, तो चलिए आज कृष्ण जी का प्यारा सा भजन सुनते हैं और इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी।

क्या बात है जी, राधे राधे। गुड वाली मॉर्निंग है, मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 10:34 हो चुके हैं। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और समय की बात करूं तो 10:34 हो चुके हैं। और आइए बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास। चलिए, जय श्री राम। रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल परदेसी हो गया। क्या बात है जी। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रिजवान खान जी, और ये है जिला मुरादाबाद ग्राम बी चुना से कनेक्ट होते हैं। उमेश खान इनके दोस्त हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं, टिप टिप बरसा पानी। क्या बात है जी, टिप टिप बरसा पानी, ये हम गाना आपको डेफिनेटली सुनाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान जी कनेक्ट होती है, इनके जो इन्होंने औरों का नाम मेंशन किया है, गीता कश्यप, ललिता जी, लक्ष्मी कश्यप। ओके जी, हेलो, गुड मॉर्निंग आपको, हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये आज गाना सुनना चाहती हैं, ये मौसम का जादू है मितवा। क्या बात है जी, आखिरकार ये मौसम बड़ा ही औसम हो रहा है, तो ये गाना तो सुनना बनता ही है। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी गाना सुनना चाहते हैं, जिसके लिए भी सुनना चाहते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9823789698 आपका ये रेडियो, प्यारा रेडियो।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 10:47 हो चुके हैं। गुड वाली मॉर्निंग है जी। और एक बेहद खास अपडेट जो कि मैंने सोचा चलिए आप सभी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी बहुत दीवाने होते हैं ना ट्रेन में सफर करने के लिए। हम कहीं भी जाते हैं तो देखिए, गाड़ी अपने गाड़ी में तो हर कोई जाता है, लेकिन ट्रेन में जो सफर करने का अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मजा आता है जब आप पूरे फैमिली के साथ ट्रेन में सफर करते हो। तो अब ये सफर करने के लिए क्या होता था पहले के टाइम में, यानी कि अभी भी ये चीज होता ही है कि हम टिकट का या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर फोटो क्लिक कर लेते हैं, और जब टीटी आता है चेक करने के लिए तो हम उसको यही दिखा देते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप PDF, स्क्रीनशॉट या फोटो खींचकर दिखाते हैं तो ये अब मायने नहीं रखा जाएगा, बल्कि आप जिस ऐप से मतलब जो आप टिकट बुक कर रहे हैं वहां पर होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास पूरी जो जैसे हम टिकट्स कटाते हैं, टिकट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लग सकती है। तो ये जो नियम है वो अब चेंज किया जा रहा है ताकि किसी भी चीज के लिए परेशानी ना झेलनी पड़े। और मैसेज की बात करूं तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बहुत अच्छे जी। फरजान रामपुर से कनेक्ट होते हैं और इनका गाना है पाकिस्तानी। सर आपने मतलब एक ही गाना आप सुनते हैं, आपके प्लेलिस्ट में कोई और तो गाने होंगे वो बताइए, वो हम सुनवाएंगे आपको। ये मैसेज आता है हमारे पास, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग रीना जी, दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और इनके दोस्त है बबलू सैनी जी। ओके, और ये गाना सुनना चाहते हैं, यानी कि छुप गए सारे नजारे, ओ क्या बात हो गई, क्या बात है। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास ये कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड आरजे, जनकपुरी सहारनपुर से कनेक्ट होते हैं जोन रोजी परवलीज जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, पल भर के लिए हमें प्यार कर ले थोड़ा ही सही, क्या बात है।

अगले मैसेज की बात करूं तो ये आता है हमारे पास मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी। कितना प्यारा नाम है जेठालाल। हर सुबह की पहली किरण आपके जीवन में खुशी शांति और समृद्धि लेकर आए। आपका दिन शुभ और मंगल हो और हर पल आप सभी श्रोताओं का खुशियों से भर दे। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी बस खुश रहे और देखिए जिंदगी में खुश रहने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, क्या एक कहावत है। तो दुख के बाद सुख जरूर आता है, बरसात के बाद धूप भी जरूर निकलती है। तो इसीलिए जिंदगी में जो हो रहा है होने दीजिए, अपने मन में सिर्फ एक ख्याल रखिए, जो होएगा देखा जाएगा, देख लेंगे। अभी से उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस आज को एंजॉय करो, जहां आप हो उस चीज को एंजॉय करो। ये नहीं कि आज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कल के ऊपर डिपेंड है यार। कल घूमने जाएंगे, कल दोस्तों के साथ जाएंगे, यहां मस्ती करेंगे, वहां मस्ती करेंगे, कल तो कभी आता ही नहीं है जी। आज को एंजॉय करो, जहां आप हो, जैसे हो आप, जो भी आप करना चाहते हो वो करो और हमेशा खुश रहो, ताकि दूसरा इंसान भी आपको देखे ना तो आपके चेहरे के मुस्कान देकर वो भी खुश हो जाए। वो भी यही सोचेगा यार ये खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो अपने चेहरे पर बस एक छोटी सी मुस्कान रखिए हर किसी के लिए। और फिल्म का नाम है सावन आया झूम के, आया सावन झूम के। और टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं जी? बिल्कुल, आपको ये हम गाना सुनवाएंगे। कश्मीर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मिराज उद्दीन जी और ये गाना सुनना चाहते हैं, याद आ रहा है। क्या बात है जी। आरजे जी आपकी आवाज बहुत प्यारी है और मिस करता हूँ। तो देखिए सर, हम सैटरडे को ही आते हैं, डेली तो नहीं आते। खुशी जी का शो होता है ये, जो कि सैटरडे को, ये सिर्फ मेरे नाम है। तो चलिए गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं। आप सभी मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896896। और बहुत ही प्यारा गाना सुनेंगे, ये मौसम का जादू है मितवा। 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है।

0: आफ्टरऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
5: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है श्रोताओं। और आज की तारीख भी बेहद खास है, 11 जुलाई, और समय की बात करूं तो 11:06 हो चुके हैं। और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान है तो शायद आप हाँ कहेंगे, लेकिन वही इंसान अगर स्वस्थ ना हो तो सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आज बात सिर्फ कितने लोग हैं इसकी नहीं, बल्कि कैसे लोग हैं इसकी भी होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वस्थ रहना भी जनसंख्या से भी बड़ी चुनौती है। और आजकल वही डिले होता है, वही हम इग्नोर करते हैं। भीड़ बढ़ाने से पहले जरूरी है सेहत बढ़े, अस्पतालों की लाइन नहीं, हेल्थ यानी कि लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, दवाइयों पर निर्भर नहीं, जागरूकता बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की असली गिनती उसकी आबादी से नहीं, उसके स्वस्थ जागरूक और खुशहाल लोगों से होती है। तो आइए आज सिर्फ जनसंख्या नहीं, स्वस्थ जीवन को भी अपनी प्राथमिकता बनाइए। आखिरी गिनती से ज्यादा जरूरी है जिंदगी बेहतर होना चाहिए। देखिए, गिनती का क्या है, वो तो सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन जब इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो जनसंख्या का क्या। आज के टाइम में यही हो रहा है, इंसान स्वस्थ बहुत कम है। आप देखेंगे अस्पतालों में जाकर लंबी लाइन की कतार लगी रहती है। आज इसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है। क्यों? पहले के टाइम में इंसान मेहनत करता था, खेत का काम, घर का काम खुद करना है, तो बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि बॉडी से सारा पसीना गंदा निकलता था। लेकिन अब हम एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, पंखे चलाते हैं, बॉडी से थोड़ा सा भी पसीना नहीं निकलने देते हैं। और वहीं योगा की बात आती है, एक्सरसाइज की बात आती है, तो नहीं कर पाते हैं, बस टाइम बढ़ाते रहते, आज से करेंगे, कल से करेंगे। ऊपर से आजकल घरों में मेड रखा जाता है खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमारी जो बॉडी है ना उसमें बीमारियां बढ़ती जा रही है। जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। कुछ काम खुद करिए, योगा करिए। सबसे पहले बात, इस बिजी शेड्यूल में ना अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, योगा जरूर करिए। आधा घंटा ही दीजिए अपने आप को, पर दीजिए जरूर, क्योंकि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता है, स्वस्थ रहना भी इसके लिए अहम भूमिका है जी। तो आप सभी को यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका क्या आखिर का मैसेज आया हमारे पास। ये हमारे साथ कनेक्ट होती है। हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। सृष्टि हमारे साथ कनेक्ट होती है और ये न्यू हरियाणवी ट्रैक गाना सुनना चाहती है। डेफिनेटली आपको हम ये गाना सुनवाएंगे सृष्टि। अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती है। नमस्ते दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और आज हमारे घर पकौड़े बने हैं, खाने के लिए आ जाइए, लेकिन आज तो मेरा फास्ट है, आप भिजवा दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। और इनका कहना है कि आप आ जाओ, मैं लेने आ जाऊंगी आपको। क्या बात है जी। और ये भी गाना सुनना चाहती है, मितवारे, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, क्या बात है जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। बिल्कुल जी, आपको ये गाना डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं बहुत ही शानदार।

क्या बात है जी, बहुत शानदार किया है। तो बस ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही जल्द सावन शुरू होने वाले हैं और आप सभी मग्न हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी सावन शुरू होने में टाइम है, लेकिन इंद्रदेव भगवान अभी से ही उनके स्वागत के लिए यानी कि प्रकट हो चुके हैं। कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा बारिश आ चुकी है और कहीं कहीं पर अभी धरती बंजर है, जहां पर बस ये कहा जा रहा है कि भगवान जी बस आ जाओ। चलिए जी, फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। गुड वाली मॉर्निंग है, मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ। समय की बात करूं तो 11:20 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब की बार सावन के महीने में जो भी कावड़ ले जाने वाले हैं, थोड़ा सा रूल में यानी कि चेंज कर दिया गया है, क्योंकि देखिए भगवान के पास हमें श्रद्धा से जानी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। क्या होता था जब हम यानी कि कांवर के लिए बच्चे जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, तो बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने साथ चाकू लेकर जाते हैं और थोड़ा सा भी लड़ाई हुआ बस वहां पर शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का अब की बार पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप कांवर लेके जाएंगे तो पूरी चेकिंग होगी, मेला जहां पर लगेगा वहां पर और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का परेशानी ना झेलना पड़े। तो अब की बार आप कावड़ ले जा रहे हैं तो ध्यान जरूर रखिए, सर्च जरूर कर लीजिए, पता चले वहां पर आपको जाकर थोड़ी परेशानी आ जाए, इसीलिए सर्च करके जाना बहुत जरूरी है जी। और ये मैसेज आता है हमारे पास, बेबी राधिका जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि मैम आपको मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जी मैं बहुत अच्छी हूँ, और ये गाना सुनना चाहती है बच्चे मन के सर...

के सारे जग की आंखों के तारे, क्या बात है जी। विक्की सागर जी का मैसेज आते हैं हमारे पास। हेलो रीना जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, मैं 18 की तू 40 का, क्या बात है जी। डेफिनेटली ये गाना हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कि आप कैसी हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं हीरो नंबर वन मूवी से, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है। आय हाय, क्या बात है जी, बड़ा ही शानदार गाना है ये गाना, हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और ही, कश्मीर से इनका रिक्वेस्ट आया था, मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर ये गाना है। चलिए जी सुनते हैं, लौट कराते हैं। और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैसेज भी करते रहिए, नंबर है 9823789689।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

क्या बात है जी, ओल्ड इज गोल्ड गाने कितने शानदार होते हैं ना। मितवारे, ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है जी। आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में, और समय की बात करूं तो 11:31 हो चुके हैं श्रोताओं। और चलिए आप सभी के प्यारे मैसेज आए उनको शामिल करते हैं। राम राम सीता राम। रीना जी, रीना सिस्टर जी, हां जी सर। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। ओके जी, सुख में विनम्र रहे और दुख में धैर्य रखे, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। सुख में विनम्र रहना चाहिए और दुख में हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि देखिए दुख के बाद सुख तो जरूर आता है। तो बस हमें क्या है, धैर्य रखना है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जो आजकल पेशेंस लेवल भैया किसी में भी नहीं है, खत्म हो चुके हैं पेशेंस लेवल, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ चाहिए इंसान को तो बस अभी चाहिए, चाहे बस 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। इसी पेशेंस लेवल को हम खोते जा रहे हैं। तो देखिए, जितना सब्र फल उतना ही मीठा मिलता है। हर फल का अलग अलग सीजन होता है और हर फल अपने सीजन में ही मिलते हैं, है ना। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी, ऋतिक आदित्य कशाना, ग्राम पोस्ट लधावली से कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो रामपुर से सबनम बीर, राहत अली, नेहा लाइबा, काजमी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो रीना जी, बहुत अच्छे हैं जी, एक गाना सुनवा दीजिएगा। हरियाणवी ट्रैक है, तू कौन से गांव की छोरी। मैं हरियाणा गांव की छोरी जी। चलिए श्रोताओं, यूं ही FM मुरादाबाद सुनते रहिए और अपना भर के प्यार लुटाते रहिए, क्योंकि ये आपका रेडियो है, अपने शहर का रेडियो है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको एंटरटेनमेंट करता रहता है। और गाने, ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार वाले होते हैं। तो बस कनेक्ट रहिए। और आज का जो टेम्परेचर है अभी राइट नाउ बताऊं तो 33 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की धूप यानी कि प्रीटी सन धूप निकलने वाली है आज, हल्की हल्की सी। अगर आप बाहर बाहर के नज़ारे देख पा रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं कि अभी कड़क वाली धूप निकली है या फिर प्रीटी प्रीटी वाली धूप निकली है, जल्दी बताइए जी मैसेज करके। नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। अलका याग्निक जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज में गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना, एंजॉय किया श्रोताओं। क्या बात है, कुछ गाने इतने शानदार होते हैं ना भैया कि सुनकर ना झूमने का मन कर जाता है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं, यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में समय की बात करूं तो

11:42 हो चुके हैं और देखिए बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और आज का दिन बेहद खास है जी, क्योंकि मौसम भी बड़ा ही सुहाना है। अगर आप घूमने जाना चाहते तो बिल्कुल जी एंजॉय करिए। वैसे भी आज सैटरडे हैं और कल संडे, तो हर किसी की प्लानिंग चल रही होगी भैया कि आखिरकार संडे है, मौसम भी सुहाना है तो कहाँ चले घूमने के लिए। प्लानिंग तो पहले से ही बन जाती है ना। तो देखिए वीक लाइफ में ना एंजॉय करिए, घूमिए। आप जितना घूमेंगे उतना पूरा दुनिया को आप देख पाएंगे और दुनिया को समझेंगे भी, तो इसीलिए घूमना बहुत जरूरी है जी। देखिए काम तो चलता ही रहता है और काम कभी खत्म होने वाला नहीं है जिंदगी के लाइफ, इंसान की जिंदगी से ना काम कभी खत्म नहीं होता है और ना ही कभी होने वाला है। इसीलिए इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस भीड़ भाड़ की दुनिया से ना थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालिए, खुद के लिए वक्त जरूर निकालिए, इंजॉय करिए, घूमिए, मनपसंद जो भी है आपका डिश वो खाइए, गाना सुनिए, मस्त रहिए जी। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली इनके दोस्त हैं, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? सैटरडे में आपको मॉर्निंग मस्ती शो में सुनकर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच जी। और मौसम के मिजाज भी बहुत अच्छे हैं, बेहद अच्छा है, क्या बात है जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, जाना है तो जा, मनाएंगे नहीं। बिल्कुल, आज हम रूठ चुके हैं इसलिए मनाएंगे नहीं। अगले मैसेज की बात करूं तो, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। ये अलीशा मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहती हैं, न्यू सॉन्ग है जी। बिल्कुल आपको मैं गाना सुनवाएंगे। चलिए श्रोताओं, गाना एंजॉय करते हैं। हरियाणवी ट्रैक है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। विक्की सागर जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना थी, हरियाणवी ट्रैक, जो कि बेहद खास, बेहद अच्छा गाना है। लेकिन गाना सुनवाने से पहले हम चलेंगे कहाँ, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक के पास चलते हैं जी, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: क्या बात है जी। लेकिन देखिए, आज है विश्व जनसंख्या दिवस, और विश्व जनसंख्या दिवस पर हम आप सभी के लिए लेकर आए बहुत ही प्यारा एपिसोड, जिसको आपने सुनना है। और देखिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक के बिना ये जो हमारा एपिसोड होता है वो अधूरा होता है। इसीलिए आप सभी का फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है उदित नारायण जी की आवाज़ में। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। गुड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ 11:56 हो चुके श्रोताओं, और अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप सभी को यही कहना चाहेंगे, आज का दिन बेहद खास है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस।
1: इसीलिए
0: और इस जनसंख्या दिवस पर देखिए, स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार को भी, अपने परिवार को आप खुशहाल रख पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत और बेहद ज़रूरी है श्रोताओं। और इसी के साथ आज हम एक एपिसोड प्ले करने वाले हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हमने एक एपिसोड रेडी किया है, उसको सुनिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो यहाँ से मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे यानी कि 3 बजे फरमाइश शो में मिलने वाले हैं, जहाँ आप सभी के फरमाइशी वाले गाने प्ले किए जाएंगे। तो कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूले, और जो इस वीक कनेक्ट हो चुके हैं वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो नए लिसनर हैं उनको भी मौका मिलने चाहिए कनेक्ट होने के लिए। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।

0: सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय

0: समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं, और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
4: धन्यवाद आरजेरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजेरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन ने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता, और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
4: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूँगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालात सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
5: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
4: देखिए अर्जरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
5: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
4: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं। कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते। कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
5: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
5: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
4: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
5: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
4: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट

0: करना चाहूंगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है, और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखिए, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है, डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे, लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
1: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
0: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
1: भाभी, आपने पिछली बार MDR टीबी का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
0: रीना, MDR टीबी यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR टीबी का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकते हैं, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए, आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा

0: लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है, सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आर्जराज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज स्टूडियो में आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन यकीन मानिए उसकी वजह भी बहुत खास है।
1: अरे भाई, देर से आए हो तो उसकी वजह भी बताइए हमारे श्रोताओं को। कहीं रास्ते में चाय समोसे पर तो नहीं रुक गई आप?
0: अरे नहीं नहीं सेहतिया जी, आज तो मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते देर कर थी। गाँव की चौपाल के पास पहुँची तो देखा कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा कोई पंचायती होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो आप लोगों से कुछ समझा रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि वहाँ सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी बड़ी भागीदारी से अधिक आपकी बातें सुन रहे थे।
1: अच्छा आरजे रीना जी, तो आपने चोरी छिपे हमारी बातें भी सुन ली?
0: जी बिल्कुल, और जो पहली बात मैंने सुनी उसने तो मुझे यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने कहा था कि अगर परिवार में दो लोग हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी दो लोगों की है। बस फिर क्या, मैंने वही तय कर लिया कि आज का कार्यक्रम भी इसी विषय पर होगा।
1: बहुत ही अच्छा आरजे रीना जी, आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आज का दिन भी इसी चर्चा के लिए बहुत खास है।
0: जी श्रोताओ, आज हम विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सेहतिया जी सच बताइए, जैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस का नाम आता है लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आता है कि आज फिर जनसंख्या कम करने की बात होगी।
1: बिल्कुल आरजे रीना जी, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है आरजे रीना। आज विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब केवल लोगों की संख्या गिनाना नहीं है, इसका मतलब हर व्यक्ति को स्वयं एकदम स्वस्थ जीवन मिले, हर युवा को अपने सपने पूरा करने का अवसर मिले, हर परिवार को अपने भविष्य से जुड़े जो फैसले हैं वो समझदारी से ले सके।
0: यानी अब बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, सोचिए अगर किसी परिवार में माँ स्वस्थ नहीं है, बच्ची को सही पोषण नहीं मिल रहा है, युवाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, और लोग बिना जानकारी के फैसला लिए जा रहे हैं, तो केवल जनसंख्या की संख्या देखकर क्या फायदा होगा? असली विकास तो तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, शिक्षित हों और अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सकें।
0: और शायद यही वजह है कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का विषय युवाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर देता है।
1: बिल्कुल सही, आज की दुनिया यह कह रही है कि युवाओं को केवल भविष्य मत कहिए, बल्कि उन्हें आज ही एक नया अवसर दीजिए। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, सही जानकारी और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, यही किसी देश की युवा और बड़ी ताकत से कम नहीं होगा।
0: लेकिन सेहतिया जी, लोग तो कहते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी बात लोगों की क्षमता है?
1: आरजे रीना, आबादी अपने आप में समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब लोगों को अवसर नहीं मिलते। अगर युवा स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: यानी हमें लोगों की गिनती से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात, और इसी सोच के साथ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी कई वर्षों से चला आ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने वर्ष 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था।
0: लेकिन लोग आज भी परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ दो बच्चे या जनसंख्या नियंत्रण समझते हैं,
1: जबकि इसका असली उद्देश्य कुछ और है। परिवार नियोजन का मतलब है कि पति पत्नी मिलकर यह तय करें कि उन्हें बच्चा कब चाहिए, कितने बच्चे चाहिए और दोनों बच्चों के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए। इससे माँ की सेहत बेहतर रहती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और पूरा परिवार बेहतर जीवन जी पाता है।
0: यानी परिवार नियोजन किसी मजबूरी का नाम नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला है।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना, और सबसे जरूरी बात यह है कि यह फैसला दोनों मिलकर लें। आज भी कई जगहों पर लोग सोचते हैं कि गर्भधारण, प्रसव और परिवार नियोजन केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार तो दोनों का है ना, इसीलिए जिम्मेदारी भी तो दोनों की होनी चाहिए।
0: सच कहूँ तो हमारे समाज में अक्सर पुरुष इन बातों से दूरी बना लेते हैं। अस्पताल जाना हो, गर्भावस्था की जाँच हो, आयरन की गोली हो या परिवार नियोजन की बात, अक्सर कहा जाता है कि ये महिलाओं का मामला है।
1: और यही सोच तो बदलनी है आरजे रीना, जो कि सबसे जरूरी है। एक जिम्मेदार केवल कमाने व्यक्ति नहीं होता, वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर गर्भावस्था की जांच के लिए भी जाता है। वो यह भी देखता है कि पत्नी समय पर पौष्टिक भोजन खा रही है या नहीं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां ले रही है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचने की तैयारी भी पहले से करते हैं।
0: यानी एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत पति पत्नी दोनों की साझेदारी से होती है।
1: बिल्कुल, और यह साझेदारी केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं रहती। बच्चों के जन्म के बाद टीकाकरण करवाना, माँ को आराम मिलने देना, स्तनपान में सहयोग करना, बच्चे की देखभाल करना और आगे परिवार नियोजन पर मिलकर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है आरजे रीना।
0: लेकिन सेहतिया जी, कई बार पुरुष कहते हैं कि परिवार नियोजन तो महिलाओं के लिए होता है, इसमें हमें इससे क्या लेना देना।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आरजे रीना। परिवार नियोजन महिलाओं का ही नहीं पूरे परिवार का विषय है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं तभी माँ स्वस्थ रहती है, बच्चा स्वस्थ रहता है और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
0: आपने आर्थिक मजबूती की बात कही, इसका परिवार नियोजन से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है आरजे रीना। सोचिए, अगर परिवार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्ची की योजना बनाते हैं तो हर बच्चे की पढ़ाई, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है। परिवार की आय का सही उपयोग होता है और भविष्य की योजना बनाने में भी आसान हो जाता है।
0: यानी बात केवल बच्चों की संख्या की बल्कि उन्हें बेहतर अवसर देने की भी है।
1: बिल्कुल सही, और यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी है। हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है परिवार के फैसले जानकारी के आधार पर लिए जाए, ना कि अफवाहों या सामाजिक दबाव के आधार पर।
0: बिल्कुल सही कहा सेहतिया जी, आपने जानकारी की बात कही, लेकिन आज भी कई लोग परिवार नियोजन के साधनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं।
1: बिल्कुल सही, और शायद यही वजह है कि हम खुलकर इन विषयों पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है।
0: तो फिर आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि परिवार नियोजन के कौन कौन से सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है, कौन सा साधन किसके लिए उपयुक्त हो सकता है, पुरुषों की भूमिका क्या है, युवाओं के लिए सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है, और आखिर स्वस्थ परिवार का रिश्ता स्वस्थ समाज से कैसे जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब जानकारी सही होती है तो फैसले भी सही होते हैं, और सही फैसले ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत देश की नींव बनते हैं।
0: सेहतिया जी, आपने अभी कहा सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन आज भी गांव में कई लोग कहते हैं कि भगवान जितने बच्चे दे उतने अच्छे, ऐसे में परिवार नियोजन की बात करना क्या सही है?
1: देखिए आरजे रीना, बच्चे भगवान का आशीर्वाद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति भी दी है। अगर परिवार अपनी परिस्थितियों, माँ की सेहत और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले तो ये भी उतनी ही समझदारी की बात है। परिवार नियोजन का मतलब बच्चों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर जीवन देना है।
0: यानी परिवार का आकार नहीं, परिवार का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, और इसी वजह से सरकार भी हमेशा कहती आई है कि परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या कम करना नहीं, बल्कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश का भविष्य भी मजबूत होगा।
0: लेकिन आज भी कई महिलाएं कहती हैं कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती, फिर भी कोई गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं कर पाती, ऐसा क्यों?
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। कई बार जानकारी की कमी होती है, कई बार डर होता है, तो कई बार परिवार या समाज का दबाव। कुछ महिलाओं को संसाधनों की जानकारी नहीं होती, कुछ को लगता है कि इससे नुकसान होगा, और कई बार पति की सहमति ना होने के कारण भी वे कई साधन नहीं अपना पाती हैं। इसीलिए केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है।
0: यानी अगर पति पत्नी दोनों खुलकर बात करें तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे रीना, परिवार में जीत बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं तभी परिवार नियोजन सफल होता है।
0: सेहतिया जी, आपने पहले बच्चों के बीच अंतर रखने की बात भी कही थी, आखिर यह इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि माँ का शरीर भी आराम चाहता है। अगर एक बच्चे के तुरंत बाद दूसरा बच्चा हो जाएगा तो माँ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगी और माँ को स्वस्थ होने में समय नहीं मिल पाएगा। इससे माँ में खून की कमी, कमजोरी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। वहीं अगले बच्चे के कम वजन के साथ साथ जन्म लेने वाले या समय से पहले जन्म लेने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें और दो बच्चों के बीच लगभग 3 साल का अंतर रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है।
0: यानी यह केवल परिवार की सुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी सवाल है।
1: बिल्कुल, और यह बात जितनी महिलाओं को समझनी चाहिए उतनी ही पुरुषों को भी।
0: लेकिन सेहतिया जी, जब परिवार नियोजन की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से सुरक्षित साधन उपलब्ध है।
1: ये सवाल बिल्कुल सही है अर्जेरीना। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ समय बाद बच्चा चाहता है तो कहीं कई वर्षों तक नहीं चाहता, और किसी का परिवार पूरा हो चुका होता है तो इसीलिए सभी की अलग अलग विकल्प है, उपलब्ध हैं सभी के लिए।
0: तो शुरुआत उन दंपतियों से करते हैं जो कुछ समय बाद बच्चा चाहते हैं।
1: ऐसे दंपतियों के लिए कई सुरक्षित विकल्प हैं, जैसे कॉन्डोम, जो गर्भधारण रोकने के साथ साथ कई यौन संक्रमण से भी आपको सुरक्षा देता है। नियमित गर्भ निरोधक गोलियाँ उपलब्ध हैं। सरकार माला एन जैसी गोलियाँ भी उपलब्ध कराती है। छाया नाम की एक गैर हार्मोनल गोली भी उपलब्ध है, जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है।
0: और जो इंजेक्शन वाला साधन है उसके बारे में भी लोग पूछते हैं।
1: जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है और यह एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इससे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की सलाह और समय के अनुसार ही लेना चाहिए।
0: कई लोग कॉपर टी का नाम भी सुनते हैं, ये क्या होता है?
1: आर्जेरीना, कॉपर टी यानी IUCD भी एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है। इससे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी लगाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे रोज याद रखने की जरूरत नहीं होती है। कई वर्षों तक यह गर्भधारण से सुरक्षा देता है और जब दंपत्ति दोबारा बच्चा चाहती है तो इसे निकलवाया भी जा सकता है।
0: लेकिन गाँव में कॉपर टी को लेकर बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि यह शरीर में इधर उधर घूम जाती है, कोई कहता है कि इससे हमेशा के लिए बच्चा नहीं होता।
1: देखिए आर्जेरीना, ऐसी ही कुछ अफवाहें हैं जो लोगों को सही फैसला लेने से रोकती है। सच ये है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सही तरीके से लगाए गए IUCD सुरक्षित होता है। अगर किसी को कोई परेशानी महसूस हो तो वह स्वास्थ्य केंद्र जाकर सलाह ले सकता है। इसके लिए अफवाहों पर नहीं, डॉक्टर, ANM और आशा की सलाह पर भरोसा करना चाहिए।
0: अच्छा, अगर किसी दंपत्ति का परिवार पूरा हो चुका हो तो उसके लिए क्या विकल्प है?
1: तभी स्थानीय साधनों पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं के लिए नसबंदी की सुविधा है, पुरुषों के लिए भी नसबंदी सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है, जिसे नो स्कल्प वेक्सटोमी या NSV भी कहा जाता है।
0: लेकिन पुरुष नसबंदी को लेकर सबसे ज्यादा डरते हैं।
1: बिल्कुल, और यह डर ज्यादातर गलत धारणाओं पर आधारित होता है आर्जेरीना। कई लोग सोचते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाएगा, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जबकि यह बिल्कुल गलत है। नो स्किल्पल वेसेक्टोमी एक सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे पुरुष की ताकत, मर्दानगी या रोजमर्रा के काम पर कोई असर नहीं पड़ता।
0: यानी पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल, परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं है। अगर पुरुष आगे आएंगे तो महिलाएं भी, अनावश्यक बोझ उन पर भी कम होगा और परिवार के निर्णय अधिक समानता के साथ लिया जा सकेगा।
0: और अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो बिना योजना के असुरक्षित संबंध,
1: ऐसी स्थिति में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग नियमित गर्भ निरोधक साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सही सलाह के लिए स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना सबसे अच्छा रहता है।
0: सेहतिया जी, सरकार इन सब सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है?
1: आर्जेरीना, सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं। मिशन परिवार विकास माध्यम से उन्होंने इन राज्यों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया है। और भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां प्रजनन दर अधिक रही है, लोगों को अधिक विकल्प मिल रहे हैं। इसके लिए अंतरा और छाया जैसे नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। संस्थागत प्रसव के बाद परिवार नियोजन की सलाह देने की व्यवस्था मजबूत की गई है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जानकारी देती है, कॉन्डोम और गोलियां उपलब्ध कराती है और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से भी जोड़ती है।
0: यानी अब केवल अस्पताल जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता बल्कि सेवा समुदाय तक पहुँच रही है।
1: बिल्कुल, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर तय दिनों में परिवार नियोजन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि लोगों को सुविधा के लिए बार बार चक्कर ना लगाने पड़े।
0: लेकिन सेहतिया जी, आपने शुरुआत में युवाओं की बात भी की थी, अगर सही जानकारी युवावस्था में ही मिल जाए तो शायद आगे चलकर बहुत सी समस्याएं रोकी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजीरीना, आपने बिल्कुल सही बात कही है और यही हमें अगली चर्चा में समझना है कि किशोर और युवाओं को इतना महत्वपूर्ण है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है और कैसे सही जानकारी उनके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है।
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन सेहतिया जी, एक बात बताइए, अगर कोई दंपति परिवार नियोजन अपनाना चाहता है तो उनके पास विकल्प क्या क्या है? कई लोगों को लगता है कि बस नसबंदी ही एक रास्ता है।
1: आरजी रीना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज सरकार परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित और वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध करा रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहता, कोई दो बच्चे के बाद परिवार पूरा मानता है तो कोई अभी केवल अंतर रखना चाहता है, इसीलिए विकल्प भी अलग अलग है।
0: यानी एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं आरजी रीना, अगर पति पत्नी अभी बच्चा नहीं चाहते हैं लेकिन भविष्य में चाहते हैं तो उनके लिए स्पिंक्स मेथड्स यानी जन्म के बीच अंतर रखने वाला साधन उपलब्ध है।
0: जैसे
1: सबसे पहला कॉन्डोम, यह बहुत ही आसान और सुरक्षित है और बिना किसी दुष्प्रभाव वाला तरीका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये ना केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि यौन संचारित संक्रमण यानी STI और HIV से भी सुरक्षित कर देता है। इसीलिए विशेष रूप से ये युवाओं और नवविवाहित दंपतियों के लिए एक अच्छा विकल्प है।
0: और अगर कोई महिला रोज गोली खाना भूल जाए?
1: तब चिंता की कोई बात ही नहीं है आरजी रीना, सरकार माला एन नाम की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराती है। इसके अलावा छाया नाम की गोलियां भी उपलब्ध हैं, जिससे हर दिन बल्कि निर्धारित अंतराल पर लिया जा सकता है।
0: और कई बार लोग कॉपर टीका भी नाम लेते हैं।
1: बिल्कुल, जिसे हमने IUCD या कॉपर टी कहते हैं, सरकार की ओर से CUIUCD 380A और CUIUCD 375 उपलब्ध है। इसे प्रशिक्षित ANM या डॉक्टर लगाते हैं। एक बार लगाने के बाद यह कई वर्षों तक सुरक्षित गर्भ निरोधक देता है और जब

0: महिला चाहे इसे निकलवा कर फिर से गर्भ धारण कर सकती है।
1: और इंजेक्शन वाला तरीका भी है ना?
0: जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। इसमें हर 3 महीने पर 1 इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन महिलाओं के लिए रोज गोली लेना मुश्किल हो, उनके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।
1: और अगर किसी कारणवश असुरक्षित संबंध बन जाए,
0: तब आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें नियमित गर्भ निरोधक रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह केवल आपात स्थिति के लिए है।
1: और जिसका परिवार पूरा हो चुका है,
0: तब स्थायी उपाय भी उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मैनी लैब और लेप्रोस्कोपी नसबंदी, और पुरुषों के लिए नो स्किल्पल वेक्सोटोमी, जैसे NSV कहा जाता है।
1: लेकिन हमारे यहाँ तो पुरुष नसबंदी से लोग बहुत डरते हैं।
0: डरना जानकारी की कमी पैदा होता है। सच्चाई यह है कि नो स्किल्पल वेक्सोटोमी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, जल्द ही रिकवरी होती है, और इससे पुरुषों की ताकत कम करने की क्षमता या वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मकता प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल शुक्राणु का स्तर बंद करता है।
1: यानी जो बातें लोग सुनते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाता है, वह गलत है?
0: बिल्कुल गलत है, यह केवल अफवाहें हैं। इसीलिए सरकार लगातार पुरुषों की भागीदारी बढ़ने पर जोर दे रही है।
1: सेहतिया जी, सरकार परिवार नियोजन के लिए और क्या क्या कर रही है?
0: सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, उनमें सबसे प्रमुख है मिशन परिवार विकास।
1: यह क्या है?
0: जिन राज्यों और जिलों में प्रजनन दरें ज्यादा हैं, वहां परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य है हर दंपति तक उनकी पसंद के अनुसार सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन पहुँचाए।
1: यानी केवल साधन उपलब्ध कराना ही नहीं,
0: बिल्कुल इसके साथ साथ लोगों को सही जानकारी देना, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक सेवाएं पहुंचाना, प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन की सलाह देना, स्वास्थ्य संस्थानों में निश्चित दिनों पर परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये सभी इस अभियान का हिस्सा है।
1: और पुरुषों की भागीदारी?
0: वो भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों की साझेदारी और जिम्मेदारी है।
1: लेकिन बात केवल शादीशुदा लोगों की ही नहीं, आज तो युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है।
0: बिल्कुल आरजी रीना, भारत में लगभग 25 करोड़ से अधिक किशोर और किशोरियां हैं। यही देश का भविष्य है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
1: सरकार इसके लिए क्या कर रही है?
0: इसके लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RKSK चलाया जा रहा है।
1: इसमें क्या होता है?
0: इसमें किशोरों को केवल प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी ही नहीं दी जाती, बल्कि पोषण, एनीमिया, मासिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव, हिंसा की रोकथाम, मानसिक धर्म, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सही निर्णय लेने जैसी कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती हैं।
1: यानी यह केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की तैयारी है।
0: बिल्कुल सही, इसके लिए एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स यानी किशोरी हितेशी स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाए गए हैं, जहां लड़के और लड़कियां बिना झिझक के सलाह और सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं।
1: और स्कूलों में भी कुछ कार्यक्रम चलते हैं ना?
0: जी हाँ, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं।
1: इसमें क्या खास बात है?
0: हर स्कूल में एक पुरुष और एक महिला शिक्षक को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है। वो बच्चों के साथ मित्र रूप से स्वस्थ पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समान, स्वच्छता और किशोर स्वस्थ जैसे रूप पर चर्चा करते हैं, ताकि बच्चा शुरू से ही सही जानकारी के साथ बड़ा हो।
1: सिहतिया जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस का वैश्विक संदेश भी युवाओं को सशक्त बनाने का है।
0: बिल्कुल, इस वर्ष का संदेश यही कहता है कि यदि युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी मिलेगी, तभी समाज और देश का संतुलित विकास संभव होगा।
1: यानी लोगों को यह नहीं बताना है कि कितने बच्चे हो, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी इच्छा से हमारी जानकारी के आधार पर सही समय पर निर्णय ले सके।
0: बिल्कुल, यही प्रजनन का अधिकार है। हर व्यक्ति का यही अधिकार है कि वह कब शादी करे, कब माता पिता बने, कितने बच्चे हों और उनके बीच कितना अंतर हो, लेकिन यह निर्णय सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ होना चाहिए।
1: सिहतिया जी, आज की बातचीत से मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। विश्व जनसंख्या दिवस केवल आबादी गिनने का दिन नहीं है।
0: बिल्कुल, यह जिम्मेदारी समानता और अवसर की बात करता है।
1: यह महिलाओं के सम्मान की बात करता है।
0: यह पुरुषों की भागीदारी की बात भी करता है।
1: यह किशोरों के भविष्य की बात भी करता है।
0: यह स्वस्थ परिवारों की बात करता है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बताता है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत घर से होती है, जहां पति पत्नी मिलकर फैसले लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बच्चों को बेहतर भविष्य देने की तैयारी करते हैं।
0: बिल्कुल, जब पुरुष जिम्मेदारी निभाते हैं, महिलाएं सशक्त होती हैं, किशोर सही जानकारी पाते हैं और परिवार मिलकर निर्णय लेता है, तभी समाज आगे बढ़ता है।
1: तो श्रोताओं, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए एक संकल्प लेते हैं, हम परिवार नियोजन से जुड़े मिथकों पर नहीं, सही जानकारी पर विश्वास करेंगे। महिलाओं के साथ पुरुष भी बराबरी से स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे, किशोरों को सही जानकारी देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत की पहचान है।
0: यदि आपको परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों या किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से अवश्य संपर्क करें। सभी सेवाएं गोपनीयता और सम्मान के साथ उपलब्ध कराई जाती।
1: इसी संदेश के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए अनुमति। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आरजे रीना जी। सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा, जनसंख्या का सवाल केवल संख्या नहीं बल्कि हर व्यक्ति के बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य का सवाल है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है आरजे रीना।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने और अपना परिवार का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त आरजे खुशी, और मैं हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम लेकर, जी हां फेवरेट शो लेकर, सोच बदलो। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन शायद हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। खुश दिखना और सच में खुश होना दोनों अलग हैं। और मेरे साथ में यहाँ पर कुमकुम भी है। और बताइए कुमकुम, कैसी हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद आप स्टूडियो आई हैं।
1: जी हाँ, मैं बहुत दिन बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं घूमने गई थी अपनी मम्मा के घर। बहुत टाइम से उनकी याद आ रही थी तो सोचे थोड़ा घूम के आ जाए। मौसम भी काफी गर्म था और अब थोड़ा ठंडा हो गया, तो क्यों ना काम कर लिया जाए वापस।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा आपने। कुमकुम, आज का हमारा टॉपिक है खुश दिखना और सच में खुश होना अलग अलग है। आप क्या कहना चाहेंगी इस टॉपिक पर?
1: जी हाँ, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि जो लोग होते हैं दिल से खुश होते हैं तो उनके चेहरे पे निखार आ जाता है, लेकिन जो लोगों को दिखाने के लिए खुश होते हैं उनके चेहरे पे एक बनावटी मुस्कान होती है। आज लोग मुस्कुराते बहुत हैं लेकिन अंदर से परेशान भी बहुत होते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे हैप्पी फोटोज तो होंगी लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रेस, लोनलीनेस और प्रेशर। क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं?
0: कुमकुम, ये तो आप सही कह रहे हो कि आजकल लोग खुश तो है और खुश नहीं भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइफ में बहुत सारा तूफान होता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम फेक स्माइल कर देते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। आज लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगे हैं, पता है कुमकुम?
1: जी, मैं ठीक हूँ बोलना आसान होता है लेकिन दिल की बात कहना बहुत ही मुश्किल। डिस्कशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी का प्रेशर होता है, स्माइल बिहाइंड पेन, लोनलीनेस, इमोशनल लाइंस, इमोशनल लोनली, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं।
0: और पता है आपको कुमकुम, कई लोग इसलिए भी हंसते हैं ताकि कोई उनका दर्द समझ ना पाए। क्या लोग आज अपनी फीलिंग्स छिपाने लगे? क्या सोशल मीडिया ने फेक हैप्पीनेस बढ़ा दी है?
1: जी, ये तो काफी सच है। लोगों को दिखाने के लिए तो दिख रहे हैं कि हाँ खुश हैं, पर उनके माइंड में कितनी टेंशन्स चल रही हैं घर को लेके, फैमिली को लेके, पर वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं या वी आर हैप्पी फैमिली या आई एम सो हैप्पी पर्सन या मेरे पास सब कुछ है। ऐसा
0: चेहरे की मुस्कान देखकर हाल मत समझ लेना, कई बार लोग टूटकर भी हंसते हैं कि
1: जी बहुत बढ़िया शायरी, आप तो कमाल कर रहे खुशी जी।
0: थैंक यू सो मच।
1: आपको पता है खुशी जी, आजकल हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, लेकिन सच तो यह है कि कोई पूरी तरह परफेक्ट होता ही नहीं। सच बोलना, सोच बदलो एक ऐसा हमारी तरफ से मैसेज होता है हमारी प्यारी श्रोताओं के लिए कि उनको लगे कि हाँ जो हम बातें कह रहे हैं वो अपनाएं और सोच बदलें। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है।
0: कुमकुम, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी टेंशन्स हैं। और अगर कोई इंसान लाइफ में आगे ग्रो कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं वो संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं नहीं दिख पा रहे हो। लेकिन हर इंसान ऊंचाई तक पहुंचने से पहले संघर्ष का सामना करता है, और आप भी उस संघर्ष को जीत सकते हैं, उस संघर्ष से पार होकर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सकारात्मक सोच रखनी है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और वहीं अगर आप कभी किसी को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको, आपके जो माइंड है ना, वो डिमोटिवेट होने लगेगा कि उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, वो बहुत सुंदर है। ये मत आप सोचिए क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत स्पेशल है। और जब ऊपर वाले कोई भी चीज बनाते हैं ना तो वो व्यर्थ नहीं बनाते हैं, वो स्पेशल होती है और आपके अंदर भी कुछ खास है, कुछ खास कर दिखाने का। और वो बहुत प्यारी सी लाइन है ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: जी क्या बात है खुशी जी, आपने बहुत सही कहा। आजकल तो आप देखते होंगे यार, लोग मतलब कैसे हो गए हैं। हम भी कुछ ऐसे ही है, जैसे कि स्टेटस पर बिजी डाल दिया पर हम रील्स स्क्रोलिंग करते रहते हैं। मूड खराब है तो फिर भी हम कहते हैं आई एम फाइन, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सैड होकर भी मोटिवेशनल वीडियोस डालना या फिर दुख दुखी दिखने के बाद भी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना कि यार एवरीथिंग इज ओके। खुशी एक्सपेंसिव चीजों में नहीं होती, मेंटल पीस में होती है, ये तो सभी जानते हैं। पर ना उसकी मतलब उस पीस को पाया कैसे जाए, उस चीज को प्राप्त कैसे किया जाए या पाया कैसे जाए। आप लोग सब ये सोचते हो कि हाँ ये चीज मिल जाएगी, पीस हो जाएगा, मतलब दिल को शांति मिल जाएगी। नहीं होता, सुकून से आसानी से नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, खुद से बातें करते हैं,
0: खुद से
1: खुद
0: प्यार करते हैं,
1: जी खुद से प्यार करते हैं
0: खुलकर
1: और
0: बात करते
1: सबसे,
0: हैं,
1: जी वही
0: है ना।
1: बात
0: जैसे अभी
1: सबसे,
0: हम, जैसे मैं और आप खुलकर बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना।
1: जी जब हम कुछ रूल्स को तोड़ के अपने मन का करते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस होती हैं जब हमारे लिए हमारे सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो यार वो चीजें करो ना जिससे तुम्हें रियल में दिल से खुशी मिले।
0: या दिखावे की दुनिया में ना जाए, अपने रियल लाइफ में रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिखावा ना कुछ टाइम के लिए ही खुशी दे सकता है,
1: जी
0: लेकिन खुश दिखना अंदर से वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए सुकून देता है। तो आपको साथियों दिखावटी खुशी पर नहीं जाना है, आपको रियल में खुशी देती है, आपको उसको अपनाना है। तो अभी मिलते हैं आपको एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए। खुशी आपसे कहती है कि दिल से मुस्कुराइए।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी हाजिर हूँ फिर से। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, लव यू जिंदगी। खुद से प्यार करना भी एक कला है दोस्तों, और मैं आपसे कहती हूँ कि इस प्यार को ना आप कभी खुद से दूर मत कीजिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। और मेरे साथ में कुमकुम भी है, कुमकुम क्या कहना चाहती है, आइए उनसे सुनते हैं।
1: जी हाँ, मैं अपने श्रोताओं से दो लाइन शेयर करना चाहूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: हर समय स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं, हर समय स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है।
0: हाँ कुमकुम, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, पर पता है आपको, आज के टाइम में ना हम हर किसी के सामने अपने जो इमोशंस होते हैं ना, वो हर किसी के सामने हम बयान नहीं कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आपने देखा भी होगा कि अक्सर लड़कों को कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के थोड़ी ना रोते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको श्रोताओं, लड़का हो या लड़की, दर्द सबको होता है, तकलीफ सबको होती है, सबके अंदर दिल है, इमोशन सबके हैं। मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको कभी तकलीफ होती है और आपको रोना आता है तो आपको रो लेना चाहिए जी भर के, क्योंकि रोने से ना हमारे आधे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं, हमें अच्छा फील होता है, तो आप रो सकते हैं खुलकर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया करो, थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया करो। हर बार दूसरों के लिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है, हर बार दूसरों के लिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है।
1: बहुत सही कहा खुशी जी। वैसे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोगों को कि वो वीडियो बनाने में या लाइव आने में या लोगों से चैट करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, गेम ले लो, गेमिंग जोन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली को नहीं देखते हैं। बट असल में इन सबसे खुशी मिलती है या फिर सच्ची खुशी होती क्या है?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कुमकुम, मैं आपको बताती हूँ। आपने जैसे मुझे पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और बच्चे कहीं ना कहीं गेम में बिजी हैं, कहीं रील्स बनाने में बिजी हैं, तो कहीं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में वो खुशी ढूंढते हैं। लेकिन सच्ची खुशी कहाँ मिलती है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सच्ची खुशी मिलती है अपनों के साथ समय बिताने में, दिल की बातें कहने में, छोटी छोटी चीजों में। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही स्पेशल हैं। कुमकुम देखो, अब जैसे आप मेरे साथ बैठी हैं, आप मुझसे बातें कर रही हैं, आपको भी अच्छा फील हो रहा है, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, और हमारे सुनने वाले तमाम श्रोता भी इस समय मुस्कुरा रहे हैं, और पता है आपको हमारी बातों को बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं खुशी जी ने तो हमारे दिल की बात कह दी है। तो कुमकुम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप क्या कहना चाहती हो मुझे बताओ।
1: जब आप लोग दिल से मुस्कुराते हो तो हम लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि हमारे रेडियो के सहारे ही आपको कई सारी नई बातें सुनने मिलती हैं, जानने मिलती हैं, सोच बदलने का मौका मिलता है। और अभी आपने खुशी की बात की थी, जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम है और ज़्यादातर गर्ल्स शॉपिंग करना पसंद करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना खुशी जी कि असली खुशी ना अपनों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है। क्योंकि ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी सोचती थी कि ये चीज़ चाहिए मुझे, वो चीज़ चाहिए, बट शादी होने के बाद जब मैं फैमिली से अलग हुई हूँ, मुझे माँ की याद आती है, वो अपनापन याद आता है। लेकिन हाँ, आपके हस्बैंड जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहना भी एक इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे भी खुशी मिलती है। और जब हम दोबारा अपनी मम्मा के पास जाते हैं तो यार एक सुकून मिलता है।
0: ओए होए लड़की, क्या कह दिया आपने, मतलब आपकी मम्मी का नाम, जिसे आपको पता चलता होगा कि कल मम्मी के घर जाना है, तो आप तो खुशी के मारे खाना भी नहीं खाती होंगी।
1: वो कहते हैं ना, खुशी के ठिकाने नहीं है,
0: खुशी के ठिकाने नहीं है। हाँ
1: जी हाँ,
0: मई के जाने की खुशी ना लड़कियों को अलग ही होती है जब वो अपनी मम्मी के घर जाती। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, सबको पता है। और हाँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे आस पास हमारे यहाँ शादियाँ होती है, नई लड़कियाँ घर पे आती है, जैसे मैं अपने कजन भाभी की ही बात कर लेती हूँ, हम दूर क्यों जाए, पता है आप कजन भाभी जो है, मतलब शादी हुई है तो मतलब अपनी फैमिली को इतना मिस करती है, एवरी डे वो अपनी मम्मा को कॉल पर बात करती है, कॉल पर, और वो हमेशा अपनी मम्मी से हालचाल जानती है, तो अच्छा लगता है। मैंने बोला कि आप पहले से ही इतना प्यार करती है अपनी मम्मा को, या ससुराल आने के बाद कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, तो कहती है कि नहीं नहीं पहले प्यार था, लेकिन वो इतना एहसास नहीं होता था क्योंकि मम्मा नजदीक थी, अब मम्मी दूर होती है, दूर रहती है, तो अब प्यार ज्यादा बढ़ गया है, और वो जैसे ही उनको पता होता है कि कल मुझे अपनी मम्मी के घर जाना है तो आज ही पैकिंग कर लेती हैं अपने घर जाने के लिए। इतना एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर, सारे काम फटाफट से करती हैं, फटाफट उनकी एनर्जी ना डबल हो जाती है मम्मी के घर के नाम सुनते ही।
1: या इनफैक्ट ये तो बहुत ही रेयर होता है कमी से खुशी मिलती हो। ज्यादातर जो गर्ल्स होती है ना उनको ये लगता है कि बस अब तो मिल गया मौका जीने का एक और।

0: दोस्तों, खुश दिखने से ज्यादा ना खुश रहना अंदर से जरूरी है। ये हमें खाली खुशी की बात नहीं सिखाता, ये सुकून की बात सिखाता है, दिल की राहत की बात सिखाता है। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है अंदर से खुश रहना। अपनों से बात कीजिए, खुद को समय दीजिए और जिंदगी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल से जीना शुरू कीजिए। ओके दोस्तों।
1: अरिफा, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत सी बातें कही है कि जिंदगी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल से जीना शुरू कीजिए। खुशी तस्वीरों में नहीं मिलती, वो तो सुकून भरे रिश्तों में छुपी होती है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सोच बदलों के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए,
0: रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: लेकिन दिल से।
1: नमस्कार साथियों, मिलेंगे आपको बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।
1: बाय बाय एवरीवन।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल
1: से।
0: तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: सही बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए तो
0: भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मत्स्य मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
4: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
5: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 84, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।
8: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
9: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। श्रोताओं, हम आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जहां हम बात करने वाले हैं महिला मंच शो में, यानी कि PMJAY के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य

0: श्रोताओं का यहाँ पर स्वागत। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे बड़ा लाभ यही है कि परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अगर किसी को कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायलिसिस, बड़ी सर्जरी या अन्य गंभीर बीमारी हो जाए तो इसका इलाज इस योजना के तहत कराया जा सकता है। ये सुविधा कैशलेस है, यानी अस्पताल में भर्ती होने पर आपको इलाज के लिए पैसे जमा नहीं करने पड़ते। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, डॉक्टर की फीस, जाँच, दवाइयाँ, ऑपरेशन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद की कुछ जरूरी दवाइयों का खर्च भी शामिल होता है। इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। परिवार के सभी पात्र सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी हर साल 5 लाख तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो।
1: अब हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए।
2: सभी को नमस्कार। आयुष्मान कार्ड की पात्रता जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए। beneficiary.nha.gov.in पर क्लिक करेंगे और बेनिफिशियरी से ही ओटीपी के माध्यम से जब हमारा पेज खुलकर आ जाएगा तो उस पेज पे लिखा होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रथम चरण में आपको देखने को मिलेगा जो ब्लॉक होगा उसमें लिखा होगा स्कीम, तो PMJAY स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जिस स्टेट से संबंधित है आप, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर सब स्कीम आती है, सब स्कीम में आशा, आंगनवाड़ी, BOCW जो मजदूरी कार्ड से रिलेटिव होती है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी की, कुंभ मेला वर्कर और PM जनमन PVTG जो आदिवासी क्षेत्र होता है, और PMJY और साथ ही साथ PMJAY अंत्योदय राशन कार्ड की स्कीम होती है। आप सर्वप्रथम PMJY स्कीम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के हैं तो मुरादाबाद सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो सर्च बाय लिखा होगा फैमिली आईडी, आधार नंबर, PMJAY आईडी। तो हम फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अपनी फैमिली आईडी डाल सकते हैं अगर हमारे पास है। अन्यथा की स्थिति में आप आधार नंबर डालेंगे और डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद सर्च पे जाएंगे। अगर आपका नाम आता है तो आप KYC के उपरांत अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
2: कार्ड बन जाने के उपरांत, आयुष्मान कार्ड का उपरांत बीमारी के अंदर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भर्ती होने पर ही लागू होता है। आप जाएंगे अस्पताल में, कंडीशन है आपकी और भर्ती हो रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड आपका नियम अनुसार सूचीबद्ध चिकित्सालयों में लगा दिया जाए।
3: अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप कहाँ कहाँ इसका इलाज करवा सकते हैं और ये इसका क्या लाभ मिलता है?
2: जैसा कि आप जानते हैं, गंभीर बीमारियां कहीं ना कहीं हमारा शोषण कर रही हैं। उन बीमारियों के लिए जो हमारा जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी है और साथ ही साथ उनको कोई बीमारी हो गई है या अस्पताल में जा रहे हैं, 5 लाख तक का मुफ्त निःशुल्क नियमानुसार इलाज का लाभ का प्रावधान है जो सूचीबद्ध चिकित्सालयों में नियमानुसार दिया जाता है।
3: अगर माता पिता का आयुष्मान कार्ड है तो बच्चों को किस प्रकार से उनके लाइफ में काम आ सकता
2: है? बहुत अच्छी बात आपने सवाल पूछा है। बच्चों का किस प्रकार लाभ मिल सकता है माता पिता के बने हुए आयुष्मान कार्ड से? माता पिता के बने हुए आयुष्मान कार्ड से अगर बच्चों को कोई दिक्कत है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज उन्हीं के बने हुए माता पिता के आयुष्मान कार्ड से हो जाता है।
3: सर, एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहेंगे?
2: संदेश, आप अपनी सभी पात्रता जानें, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जन सेवा केंद्र, पंचायत सहायक, कोटेदार, आशा, आंगनवाड़ी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। हर जगह आयुष्मान मित्र हैं जो कार्य कर रहे हैं, कार्ड अभियान चल रहा है, सभी बहुत तेजी के साथ कार्ड को बना रहे हैं। ये पूरे भारत की योजना है, इसमें आप सभी भागीदार बने, लाभ दें, साथ ही साथ स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।
3: थैंक यू सो मच सर।
1: और इसके लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
0: इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC के अनुसार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवार इसमें शामिल हैं। अंत्योदय योजना, AAI और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग भी इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में रेड़ी पटरी लगाने वाले मोची, आदिवासी, निराश्रित और अन्य पात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह योजना जाननी है कि आपका नाम इस योजना में है या नहीं, तो आप अपना मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपनी पात्रता की जांच करा सकते हैं। रीना, आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?
1: अरे बहुत आसान है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पहले अपनी पात्रता

चाचे, यदि आप पात्र है तो ई केवाईसी पूरी करके घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी अस्पताल या आयुष्मान मित्र के पास जाए। वहां आपकी पहचान फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी और आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है तो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाइए। यह कार्ड बीमारी के समय आपके इलाज का बड़ा सहारा बन सकता है और आपको आर्थिक परेशानी से भी बचा सकता है। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है महिला मंच, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पीएम जेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। और दोस्तों, प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, भर्ती होने से पहले और बाद के कुछ चिकित्सा खर्च भी शामिल है। कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी का उपचार देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में पोर्टेबल सुविधा यानी पात्र लाभार्थी दूसरे राज्य में भी इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को मिलता है। पात्रता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तय की जाती है। अगर किसी श्रोता को ये जानना हो कि उनका नाम सूची में है या नहीं, तो वह आर्थिक आयुष्मान भारत पोर्टल या नजदीकी कमिंग सर्विस सेंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना दे, केवल अधिकृत केंद्रों और आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं जानते हैं और किसी के आप बातों में आ जाते हैं और उनको वो बोलते हैं आपसे कि हमें पैसे दो, हम आपका फ्री इलाज करवा देंगे। लेकिन जब आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है तो आपको किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ किसी को भी पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी बोले, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। श्रोताओं, अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप सभी को पेश है हमारी तरफ से।
0: दोस्तों, इलाज जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बीमारी से बचाव। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच हमें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
4: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
3: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
3: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
4: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
3: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
4: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
3: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
4: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
3: EKCC साख से समृद्धि।
4: नियम और शर्तें लागू।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जरीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 5 बजकर यानी कि 3:08 हो चुके हैं। और आपने क्या करना है, यानी कि ये फरमाइश शो है और कॉल करना है हमें, नंबर है 9837896896 पर आप कॉल करके अपने फेवरेट वाला गाना आप सुन सकते हैं, क्योंकि डेली एवरी डे फरमाइश शो आता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे आप सभी के साथ कनेक्ट रहते हैं। आप सभी के जो भी फरमाइश है उसको पूरा किया जाता है, यानी कि गाना वही जो आप सुनना चाहे, तो इसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपने हमें सीधा आपको कॉल करना है और हमारा नंबर भी बहुत ही सिंपल सा है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस 4 डिजिट आपने याद करना है, यानी कि 9837, फिर फ्रिक्वेंसी 896896। बस सिंपल सा नंबर है, आप आराम से आप सुन सकते हैं और एक गाना सुनवाते हैं। और आप भी कॉल करते रहिए फरमाइश शो में। 3:09 हो चुके हैं श्रोताओं।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। हम आपके हैं कौन मूवी से, यानी कि ये मौसम का जादू है मितवा, और आज हल्की हल्की सी प्रीटी प्रीटी सी धूप निकली हुई है श्रोताओं, जो कि धूप का आप आनंद भी ले रहे हैं ना, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो आज भगवान जी ने कहा कि चलो मैं ही आ जाता हूँ। सूर्यदेव भगवान आज प्रकट हो गए हैं अच्छे से नहा धो के, और समय की बात करूँ और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना फरमाइश शो में, समय हो चुका है 3:14। आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है और अपने फेवरेट वाला गाना आप सुन सकते हैं। नंबर है 9823789689। चलिए अगले यानी कि फर्स्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी,
0: नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका?
1: साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार से। बहुत
0: जी बताइए कैसे हैं?
1: बढ़िया है, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज हमको नई नई फिल्म है सुहाग गाने के बोल रहे हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है,
0: ओ
1: नमस्कार।
0: ओके जी, नमस्कार। चलिए तो ये हम गाना सुनते हैं, गोरे गोरे मुखेरे पर काला काला चश्मा, यानी कि सुहाग मूवी से है, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज़ में।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। गोरे गोरे मुखर पे काले काला चश्मा, क्या बात है जी। वैसे देखिए, धूप के टाइम ना ये कहा जाता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो चश्मा जरूर लगा के जाना चाहिए, है ना। ऊपर से आप बाइक चला रहे हैं तभी भी आपको चश्मा जरूर पहनना चाहिए। अदरवाइज आप हेलमेट लगा रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको हेलमेट लगा के ही बाहर जाना होता है, बाइक चला रहे हो चाहे आप स्कूटी चला रहे हो, ताकि आपके वो इसलिए लगाया जाता है कि आप एक सेफ रहे, दूसरा कि आपके आँख में डस्ट वगैरह ना गिरे। अगर डस्ट वगैरह आके लग जाएगा, गिर जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हेलमेट पहना जाता है, सेफ रहे और आपकी आंखें भी सेफ रहे। सो श्रोताओं, फरमाइश शो में आप आरजेरीना के साथ कनेक्ट हैं। समय की बात करूँ तो 3:21 हो चुके हैं, और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है सर सो गए हैं क्या। हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: सर सो गए थे क्या। हेलो हेलो, लग रहा है सर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं
1: हेलो
0: सर, आप बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हैं। हेलो चलिए भैया, हम इनका गाना प्ले कर देते हैं, इन्होंने बता दिया है, जो कि इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इनका गाना है, बहुत ही शानदार इन्होंने गाना बताया था, सुनिए ज़रा इसको।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आप सभी को। आज रीना कनेक्ट है फरमाइश शो में और समय की बात करूँ तो 3:29 हो चुके हैं श्रोताओं। और इस फरमाइश शो में आपने क्या करना था? कुछ नहीं करना है, आराम से आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप घर पर है और सोच रहे कि मुझे आज यार धूप भी निकली हुई तो थोड़ा सा घूम लेते हैं या फिर दोस्तों के साथ इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी तो बाहर जा नहीं पा रहे थे ना, तो आप गाना सुन सकते हैं। और देखिए, जब आप सफर में होते हैं तो गाने अपने पसंद के सुनते हैं ना, तो सफर कैसे कंप्लीट हो जाता है आपको भी नहीं पता चलता है। और वहीं आप सोच रहे हो कि चलिए यार थोड़ा देर ना, थोड़ी देर सो जाते हैं और थोड़ी देर सोने के बाद ना माइंड है ना वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, तो आप चाह रहे कि बस अच्छे से नींद आ जाए, उसके लिए हमें कॉल कर लीजिए। नंबर है 9837896896। फिलहाल हम अब अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं?
5: गुड आफ्टरनून,
4: बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या नाम है आपका?
5: राम करके आयुब से बात कर रहा हूँ।
4: हाँ जी आयुब जी, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज?
5: गाना है
4: ओके जी, किन के लिए आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
5: हमारे दोस्तों के लिए।
4: चलिए जी, आपके दोस्तों के लिए गाना सुनना चाहते हैं, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर? ठीक है, ओके। तो चलिए, बहुत ही शानदार गाना है। देखा, आप दोस्तों को भी गाना डेडिकेट कर सकते हो, किसी समझ जाना जी, सारा बस काफी होता है। मतलब आप सुनना चाहते हो बिल्कुल सुन सकते हो, नाम भी मेंशन कर सकते हो ताकि वो खुश हो जाए, है ना, कि आप उनका नाम रेडियो पर अनाउंस कर रहे हो। तो चलिए फिलहाल ये गाना सुनकर आते हैं और अभी कॉल करते रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: क्या बात है जी, अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, जिंदगी बन गए हो तुम। और ये गाने वाकई में जो पुराने गाने हैं, 90s के, 80s के, 70s के गाने हैं ना, सदाबहार गाने, यानी कि आपको इनको कितनी बार भी सुन लो मन नहीं भरता, बस एक ही मन करता है यार एक बार और रिपीट हो जाए, है ना। सो आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो फरमाइश शो में श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 3:37 हो चुके हैं, और आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है 9823789689 पर, और आप अपने फेवरेट वाले गाने सुन सकते हो। अगर देखिए आपने आज कॉल नहीं किया तो कल है संडे, और बेटा जी संडे को हमारा ये फरमाइश शो नहीं आता है, तो इसीलिए जो मौका मिले तो मौके पर चौका लगा देनी चाहिए, पता चले कि छक्के के चक्कर में आप लग ही नहीं पाएगा आपसे, है ना, इसीलिए चौका लगाइए पहले, छक्के बाद में लगाएंगे। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून। नमस्कार,
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: जिला मुरादाबाद गांव बिजनेस उस्मान टेलर बोल रहा हूँ। रीना जी,
0: उस्मान जी बताइए कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं?
1: हाँ शुक्र है खुदा का, आप सुनाओ।
0: चलिए जी बहुत अच्छी बात है, हमारे फैमिली में भी, स्टूडियो में भी सब बहुत बढ़िया हैं। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जानी दुश्मन फिल्म का सुनना, खुल गए जिंदगी के नए रास्ते।
0: खुल गए जिंदगी के नए रास्ते, वैसे भी आज धूप भी निकल ही चुकी है ना।
1: बहुत तेज गर्मी हो रही है।
0: गर्मी हो रही है तो बारिश ठीक है सर या फिर धूप?
1: नहीं, मौसम बारिश का ही होना चाहिए।
0: अच्छा, बारिश का ही होना चाहिए।
1: हाँ
0: चलिए जी इंतजार करिए, फिर से बारिश वाले दिन आने वाले हैं। ठीक है जी, हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है? चलिए जी, खुल गए जिंदगी के, ये गाना मैं शायद पहली बार सुनूंगी, आई डोंट नो। फिलहाल आपको मैं एक गाना सुनवाती हूँ और आप भी कॉल करते रहिए श्रोताओं, क्योंकि कल संडे है और संडे का ये जो फरमाइश शो है वो नहीं आता है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसव

0: व्यक्ति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज। बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जरीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 3:45 हो चुके हैं और आज की तारीख 11 जुलाई, यानी कि अपने आप में बहुत खास है। आज एकादशी है भैया, और जिनका जिनका आज एकादशी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको जिनका आज एकादशी नहीं है उनको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। सो आपने बहुत प्यारा गाना सुना है, और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, बताइए सब कैसे हैं?
3: सब बढ़िया है, मौज बहार है, और आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
2: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज?
3: मूवी का नाम है डेंजर इश्क, और गाने वो रहे तो ही रब तो ही खुदा, इस तरह से करके गाना है।
2: ठीक है जी, किन के लिए आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
3: और मेरे साथ साथ सबसे पहले रिनेश्वर जी आप है, और मेरे साथ मेरी पत्नी माया देवी है, दोनों बेटे ऋतु कसाना और दोस्त हैं राजवीर सिंह यादव और मुस्कान जी बीजना से।
2: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
3: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई, ये गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार ट्रैक है, बहुत प्यारा गाना है। तो इस गाने को सुनते हैं और लौट कर आते हैं। और कृपया उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि जिन्होंने इस वीक कॉल किया है, कृपया करके आप कॉल ना करें। नए लिसनर को मौका दीजिए जिन्होंने इस वीक कॉल नहीं किया है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। आपने डेंजरस इश्क मूवी से ये गाना एंजॉय किया है, राहत फतेह अली खान जी की आवाज़ में, तुलसी कुमार जी की आवाज़ में। बहुत ही शानदार गाना, तू ही रब तू ही दुआ तू ही खुदा। और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हो फरमाइश शो में। इस समय की बात करूँ तो 3:54 हो चुके हैं, और सच में आप सभी के जो गाने होते हैं ना, बहुत ही बेहद शानदार वाले गाने होते हैं। आखिरकार आप अपने प्लेलिस्ट में क्या बात है, शानदार शानदार गाने स्टोर करके रखते हैं ना। चलिए जी, अच्छी बात है, रखने चाहिए ताकि मौका मिले और मौके पर चौका लगा देना चाहिए। फिलहाल हम अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है जी? गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक हैं, आप बताएं।
0: बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है मैम हैदर अली।
0: हैदर अली जी, बताइए हैदर, कौन सा गाना सुनना चाहते हो आप?
1: कौन सुनना है मैम? दिल वाले मूवी का
0: जी गाना बताइए। मनवा इमोशन जागे रे। किसके साथ अभी
1: जी
0: क्या हुआ? हेलो
1: जी मैम,
0: जी किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ मैम, हम और हमारे भाई दोनों साथ काम कर रहे हैं, दोनों सुनना चाहते हैं।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी मैम,
0: ठीक है जी। चलिए जी, गाना सुनना चाहते हैं दिलवाले मूवी से, बहुत ही शानदार गाना है। सो इस गाने को एंजॉय करिए और आप भी कॉल करते रहिए।

0: ड्यूटी फुल। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आरजे रीना के साथ फरमाइश शो में है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 4:02 हो चुके हैं और अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचता है। तो आपने क्या करना है, आराम से कॉल करना है 9837896896 पर। तो चलिए देखते हैं दूसरे घंटे के यानी कि फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हेलो
5: जी,
4: क्या नाम है? गुड इवनिंग।
5: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम मैम खुर्शीद है।
4: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: हरथला
4: से। तो बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
5: आशिक बनाया आपने।
4: आशिक बनाया आपने, तो आपने काफी टाइम बाद कॉल किया है, कैसा लग रहा है सर आपको?
5: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बिजी जाता था, अब भी दूसरे नंबर से कॉल लगा है मेरा, बिजी पता नहीं कॉल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर या क्या। मैं पहले मैसेज भी करता था सुबह मॉर्निंग वाले शो में।
4: नहीं नहीं सर, देखिए ब्लॉक लिस्ट में कोई नंबर नहीं डालता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, किसी ने हम
5: वो बात ठीक है मैम, लेकिन अभी 5-6 बार घंटी करने के बाद में तब फोन लगा है, और वो भी दूसरे नंबर से लगा है, जो पर्सनल नंबर है उससे तो लगा।
4: देखिए देखिए सर, देखिए मैं मानती हूँ आपने कॉल किया है, लेकिन आप कह रहे कि काफी टाइम बाद आपने कल किया है कॉल।
5: हाँ,
4: किया है, लेकिन एक्चुअली आपके उस नंबर से गलती से लग गया होगा तो शो करता है, तो इस वजह से थोड़ा डिले होता है।
5: मेरी बात सुनो, मैंने वो 2-3 दिन पहले ट्राई किया था लेकिन घंटी नहीं गई थी, जैसे बिजी बिजी बता रहा, तो हो सकता है उसके चक्कर में लेकिन मैंने लगाया था, ट्राई किया था लेकिन फोन लगा नहीं था मेरा।
4: ओके, कोई बात नहीं सर, चलिए फिर हम आपको एक गाना सुनवाते, ठीक है?
5: ठीक है
4: मैम। ओके जी, तो चलिए गाना सुनते हैं, आशिक बनाया है आपने, और ये गाना एंजॉय करते श्रोता, और आप भी कॉल करते रहिए

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, आशिक बनाया आपने। और देखिए एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं, तो देखिए आशिक तो बने जाते हैं ना, क्योंकि ये रेडियो जो आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी बातों से और गाने के जो एंटरटेनमेंट होते हैं मजा ही आ जाता है। तो मैं कहती हूँ जी, आपने वेट किसका कर रहे हैं, आप किसी का नहीं करना है, आपने बस हमें कॉल करना है 9823789689 पर कॉल करके आप अपने फेवरेट वाले गाने सुन सकते हैं। और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में, और समय की बात करूं तो 4:09 हो चुके हैं। आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, फरमाई रीना मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं मिलकताज खान से रिहान बोल रहा हूँ।
0: रिहान जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैम, बादल सा हो रहा है, हल्का हल्का सा, हल्का की बूंद पड़ रही है।
0: चलो नहा लीजिए फिर।
1: सुबह से तो नहाऊ है ही।
0: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोरा, गाने का बोला है टिपटे बरसा पानी।
0: चलिए जी, आपको सुनाते हैं मोहरा मूवी से ये गाना, ठीक है?
1: ठीक, ओके ओके
0: ओके जी, ओके। चलिए जी, मोहरा मूवी से ये गाना सुनते हैं, उदित नारायण जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना, यानी कि 90s के सुपर हिट गाने।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। उदित नारायण जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत मोहरा मूवी से ये गाना, टिप टिप बरसा पानी, यानी कि जब भी बारिश आती है ना, तो ये बारिश वाले गाने ना अपने आप ऑटोमेटिक याद आने लग जाते हैं। गुड वाली इवनिंग है जी, फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 4:16 हो चुके श्रोताओं, तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश, गुड
0: हाँ जी सर, गुड इवनिंग,
1: इवनिंग।
0: कैसे हैं आप, क्या नाम है?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: हाँ जी सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: हाँ मैम, एक गाना सुनना था हमें, रणवीर फिल्म का था, तो उसके गाने के बोल उस तरह से, दिल तेरा दीवाना चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना, ये गाने के बोल रही हूँ।
0: ठीक है जी,
1: और घर
0: रघुवीर
1: के
0: मूवी
1: कुछ नाम,
0: से।
1: हाँ और कुछ घर के नाम थे मैम,
0: बोल लीजिए।
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, शिफान सिद्दीकी, नाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश जान, अतीक तोफिक, दानी सिद्दीकी, मेज प्रकेन से,
0: अरे अरे
1: राम
0: अरे
1: प्रेम
0: अरे अरे अरे सर, रुक जाइए रुक जाइए
1: साहब,
0: रुक जाइए रुक जाइए
1: मुकेश कर,
0: भैया, इतना नाम नहीं लेना होता है, मतलब 2-4 नाम लीजिए बस, अगला इंसान भी वेट कर रहा है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और कॉल करते रहिए, नंबर है 9837 8969।

0: जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, दिल तेरा दीवाना, यानी कि रघुवीर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। और ये मूवी यानी कि 1995 में रिलीज हुई थी। तो श्रोताओं, आपसे बस यही कहना चाहेंगे, देखिए कल संडे है और संडे को आपको भी पता है कि मौका नहीं, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। बस कॉल करिए 9823789689 पर आपने कॉल करना है और अपने फेवरेट वाले गाने आप सुन सकते हैं। आरजे रीना आपके साथ कनेक्ट है जी फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 4:23 हो चुके हैं। सो आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो मैम, गुड
0: हाँ जी,
1: इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताइए आप कैसे हो।
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, मैं सरसखेड़ा जिला मुरादाबाद से निशा बात कर रही हूँ। जी
0: निशा जी, और बताइए, फैमिली में सब बढ़िया है?
1: मैम, हमारी फैमिली में सब बढ़िया, आप बताइए आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं। और एफएम मुरादाबाद में
0: सब बहुत बढ़िया है। कौन सा गाना सुनना चाहती हूँ आप?
1: मैम, मूवी का नाम है एक रिश्ता, गाने की वो ना कितनी रौनक थे घर में आपके आने से।
0: ओहो, क्या बात है। ये गाना किसके लिए आप सुनना चाहती हो?
1: खासकर मेरे मामा का लड़का हुआ है, आज 2 घंटे का हो गया, वो उसी के लिए है। थैंक
0: ओ, क्या बात है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी
1: यू मैम। ठीक
0: दे दीजिएगा बस।
1: है मैम, वो लोग कवार पार्टी में ना।

0: आ जाइए, स्टूडियो के द्वार हमेशा खुले हैं आप सभी के लिए।
1: ठीक है मैम। मिठाई
0: चलिए जी, हम आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी।
1: देखा है
0: अरे
1: आपने? खाए
0: अरे, आपने खाया हमने खाया, एक ही बात है। हाँ
1: ओके
0: जी,
1: मैम, थैंक
0: चलिए जी, सुनवाते आपको ये गाना, ठीक है जी।
1: यू मैम।
0: ओके, तो चलिए जी, बहुत ही शानदार गाना सुनेंगे, यानी कि आपके आने से घर में कितनी रौनक है। लेकिन श्रोताओं, गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद आपको ये गाना सुनवाते हैं।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
4: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
3: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: कॉल 9045912348।
5: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
6: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
5: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
6: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
5: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
6: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
7: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
8: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
9: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
10: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
11: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, यानी कि हम खुश हुए। और एक रिश्ता मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, और ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी, यानी कि ये आपने गाना सुना है कुमार सानू की आवाज में। देखिए मतलब मूवी देखना ठीक है, लेकिन मूवी में अगर शानदार गाने ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता है ना, और वो भी कुमार सानू की आवाज हो तो हर कोई मग्न हो जाता है जी। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है फरमाइश शो में, और गुड वाली इवनिंग है जी। समय की बात करूँ तो 4:32 हो चुके हैं। सो आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है जी? गुड इवनिंग
1: स्वाति।
0: स्वाति, हाँ जी स्वाति, कहाँ से बात कर रही हो आप?
1: हम लाइन पर मुरादाबाद से बात कर रहे हैं।
0: ओके जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तुमसे मिलकर ना जाने और भी कुछ याद आता है।
0: क्या बात है जी, किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं? किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए सुनना चाहती हूँ।
0: चलिए जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है मैम? ओके, वेलकम। तो चलिए जी, ये गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। कुछ गाने बहुत ही शानदार होते हैं, और ये गाना भी वैसे ही बहुत ही खूबसूरत।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ और याद आता है, फ्रॉम मूवी प्यार झुकता नहीं। लता मंगेशकर जी की आवाज में, सबीर कुमार जी की आवाज में ये गाना आपने एंजॉय किया। श्रोताओं, गुड वाली इवनिंग है और आप आज रीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। समय की बात करूँ तो 4:40 हो चुके हैं और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
0: अच्छा जी, बताइए क्या कर रहे हैं सर आप अभी?
1: जी बस आपका रेडियो अभी सुन रहे थे मैम, फोन बिल लगा रहे थे, फोन बिल लग गया मैम।
0: चलो अच्छी बात है, बताइए जी कौन सा गाना सुनेंगे
1: जी? आज सुनवा दीजिएगा गाने का, बोला है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को।
0: चेंज कर दिया? ओहो भैया, इन्होंने बताया गाना भी और कट भी कर दिया, लेकिन जो इन्होंने गाना पहले बताया था मैं वही प्ले करने वाली हूँ जी। चलिए फिर, आप फिलहाल आप भी कॉल करते रहिए। समय तो यहाँ 4:41 हो चुके श्रोताओं, यानी कि 20 मिनट और बाकी है हमारे पास, इसीलिए कॉल करते रहिए और अपने गाने सुनना बिल्कुल ना भूलिए।

0: रमेश जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आर्जरीना के साथ फरमाइश शो में आप कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 4:50 हो चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
8: हेलो,
7: हाँ जी गुड इवनिंग। हेलो
8: हेलो,
7: क्या नाम है आपका?
8: मेरा नाम आयत
7: है। आयत, कहाँ से बात कर रही हो आप?
8: हम फतेहपुर से।
7: जी बताओ, कौन से गाना सुनोगे?
8: ग्लैमर मूवी सॉन्ग ओ माय डार्लिंग।
7: ओ माय डार्लिंग, ओके। किसके लिए आप ये गाना सुनना चाहती हो?
8: डांस करने के लिए।
7: बात करने के लिए? हाँ। ये बोलते हैं कि खुद के लिए सुनेंगे, ठीक है?
8: हाँ।
7: क्या करती हो, पढ़ती हो आप? कौन से क्लास में हो आप? अच्छा, सिक्स्थ क्लास में हो, ठीक है जी। फिर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
8: बाय
7: बाय। चलिए जी श्रोताओं, और आप अब ये देखना कि लास्ट लकी कॉलर हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं।

0: क्या बात है जी, धुरंधर मूवी से आपने ये गाना एंजॉय किया है, मोनिका ओ माय डार्लिंग। धुरंधर मूवी ने सच में तो धुरंधर ही मचा दिया है भाई, हर कोई धुरंधर का दीवाना जो हो गया है ना, यानी कि रणवीर कपूर रणवीर सिंह की ये मूवी, ओ माय गॉड, बड़ा ही लाजवाब। सो आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है भैया, गुड वाली इवनिंग है फरमाइश शो में। समय की बात करूं तो 4:53 हो चुके हैं और अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती है। हेलो।
1: हेलो दीदी, आदाब
0: जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए दीदी।
0: मैं भी
1: आप
0: बहुत
1: कैसे हो
0: बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: दीदी मैं रामपुर से रिहाना परवीन बात कर रही हूँ आपसे।
0: रिहाना जी, और बताइए फैमिली में सब कैसे हैं?
1: सब अच्छे हैं, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सब।
0: चलिए जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी गाना सुनवा देना, मैं जो तेरे मन की मैं ना होती, तू जो मेरा तोता, ये वाला गाना सुनवा देना।
0: ठीक है जी, मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ। थैंक यू कॉल करने के लिए, आप लास्ट लकी कॉलर बनी है। क्या कहना चाहेंगी आप?
1: जी दीदी, बस मैं खुद ही लास्ट में कॉल करने की चाहत थी, आज खाना बना रही थी और मन के ला आज लास्ट कॉलर बनती हूँ।
0: आपने सोच ही लिया था है?
1: सोच ही लिया था, मतलब पूरा प्रोग्राम सुन लूँ उसी के बाद कॉल करूंगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम?
1: बहुत अच्छा लगा दीदी, बस मैंने 3 बजे से पूरा ही सुना है।
0: अच्छा अच्छा पूरा ही सुना है। चलिए जी, थैंक यू, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ओके बाय।
0: ओके बाय। चलिए श्रोता, अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। हम मिलेंगे मंडे इवनिंग मस्ती शो में शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही एंजॉय करते रहिए जिंदगी को। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम

0: मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नजर ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
6: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
5: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
6: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
5: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
6: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आर्जेरीना, और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
5: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूं, और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं।
4: हाँ जी।
5: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
4: लेकिन सर, आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
5: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
4: तो सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
5: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है, वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है, और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
4: हाँ जी, हाँ जी।
5: और आजकल कई NGO भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
4: बिल्कुल।
5: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
4: बिल्कुल। सो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
5: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
4: बिल्कुल सर।
5: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और कानून तो है ही है अपनी जगह।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
4: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
5: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
4: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
5: ठीक है।
4: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
5: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहां, जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। एट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में, स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं,
6: बिल्कुल बिल्कुल,
5: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
5: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
6: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
5: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
6: करेक्ट करेक्ट।
5: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: ऐसा कुछ उनको एक
6: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक तो मतलब सेम होती थी सर।
5: बिल्कुल।
6: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
5: हम भी अपने सीनियर से, जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी।
6: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
5: बिल्कुल, गाइडेंस मिल जाती थी।
6: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
5: हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई सिलेबस ऐसा चेंज ना हो कि
6: बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज
5: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए बार बार।
6: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, तो क्या सर मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
5: देखिए, कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा था, किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
6: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
6: खत्म
5: हो जाती है। वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: है ना, तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
6: करेक्ट करेक्ट।
5: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे चल
6: आगे भी बढ़ेगा,
5: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
6: सर, तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि यही बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
5: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है। अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाए 1098
6: जी। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: और एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप

0: सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं? तो सर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
1: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
0: और सर हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
1: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेल्फ हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
0: करेक्ट
1: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती,
0: बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
1: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन।
0: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
1: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है बड़े होके, कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो निश्चित तौर पे ये कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
0: करेक्ट।
1: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोग उसे मजाक में उड़ा
0: उड़ाते
1: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझे और उसका निदान करे।
0: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बात, क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ।
1: हाँ। पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है और बच्चा घर पे डर के बता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते
0: हैं। ये
1: तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आपको उससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है एकदम।
0: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने टीना।
0: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
1: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है, लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें चेंज हुई है तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी हालांकि मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उस जहन में चीजें बैठती
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
0: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत
1: अच्छा रहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और छोटे बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दें, बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होती
0: है। अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है, वो छोटा है अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
1: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है,
0: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
1: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
1: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने, तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
1: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
0: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
0: सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
1: देखिए समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहां से आपको तुरंत हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट, वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो किसी का भी हो, बच्चे भगवान का रूप,
1: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है हमें इसकी हेल्प करनी है।
0: करेक्ट करेक्ट। सो सर हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोता अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं, हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: तो सर हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म है कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
1: देखिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
0: करेक्ट।
1: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से एक जो है वो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप
0: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म ही हो रहा है,
1: हार्म हो रहा है उनका, उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
0: हिसाब से
1: खेल कूद भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
0: करेक्ट।
1: और खेल कूद से फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
0: करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे,
1: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
0: करेक्ट।
1: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में डालिए।
0: बिल्कुल।
1: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
0: करेक्ट।
1: हाँ उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
0: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको अच्छे से नहीं कर पाते
1: हो जाते हैं। बहुत से बच्चों का हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए, कई एग्जाम्पल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आ रही है, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़े, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाए। हाँ उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
0: करेक्ट।
1: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में है तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी चाहिए तो बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ये बहुत गलत हैबिट है, अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
0: करेक्ट।
1: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए,
0: करेक्ट।
1: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
0: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान
0: रखना चाहिए। और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छे चीज के लिए मारते थे, लेकिन के टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
1: देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते।
0: हाँ, हाँ।
1: जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते, तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: आपके मन पे, आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हर्ट किया है तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है।
0: करेक्ट ये सर।
1: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए,
0: कैसे
1: टेक ओवर करना चाहिए उसको। और जो है हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं। और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
0: कोई भी हार्म ना हो ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
1: उसको सोच के बैठ जाए
0: कि हाँ उसको अगर कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
1: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए, आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारा रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
0: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर,
1: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
1: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थायी आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
1: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को स्थायी रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
0: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
1: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी अपील लेके एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
1: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
1: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
1: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
0: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
1: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
0: बिल्कुल,
1: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाईकोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
0: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
1: जी हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
0: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
1: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को

0: जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: बहुत बहुत
1: प्लीज शादी मत।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

आबशार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा

मैसेज आता है उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का तो चेक करें खुद, अपने आप गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
4: जी कैसे हालचाल है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद के साथ बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आज की ब्यूटीफुल सेशन में आज एक बार फिर से हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं।

0: आज के खास मेहमान कौन है मेरे साथ एंड आज हम उनसे किस टॉपिक पे बात करने वाले, बिकॉज आज का टॉपिक ना इज वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड ये टॉपिक ऐसा है जिसपे बात करना तो बनता है यार। और हमने सोचा आज के टाइम पे ना इस पे बात करना बहुत जरूरी है, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, यंगस्टर हो, हर किसी को सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और हमारा राइट भी बनता है। एनआरजे आनंद भी आपसे ऐसे ही बातें करता है एंड आज की इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ कौन मौजूद है, हमारे साथ क्या बात करने वाली है वो डेफिनेटली आपको पता लगेगा, बट शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सनालिटी। आई हैव विद मी सुजाता जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आज उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, किस टॉपिक पे डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उनका वार्म वेलकम करेंगे। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? एफएम मुरादाबाद में स्वागत है आपका।
1: हाय हाय आनंद, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड मैं इतने साल दिल्ली में रही पर कभी मेरा मुरादाबाद आना तो नहीं हुआ, बट थैंक्स टू यू एंड योर रेडियो स्टेशन आज मैं मुरादाबाद के सारे वाक्यों से जुड़ गई।
0: एब्सोल्युटली, और मुरादाबाद के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुरादाबाद की दाल तो हर जगह पर मिल जाती है मैम।
1: जी जी, फेमस है ना उसका रेसिपी, मुरादाबादी दाल।
0: मुरादाबादी दाल, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुरादाबादी दाल तो मुझे लगता है हर शादियों में कहीं ना कहीं होती ही है, और जब जो लोग दाल खाते हैं वो मुरादाबाद मिस ही नहीं करते हैं फिर। है ना? एंड यहाँ पे बिरयानी भी बहुत फेमस है, तो ऑफकोर्स आप भी बिरयानी का लुत्फ उठाते होंगे जहाँ भी आप हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ चीजें दूर बची हैं, अब सब कुछ तो टेक्नोलॉजी पास लेकर आ गई है मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं शादी के बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वैसे भी हमें हर स्टेट की अपनी बिरयानी है और हैदराबाद की तो आपको पता ही है, बड़ी फेमस है।
0: मैं कभी हैदराबाद तो नहीं आया हूँ, लेकिन हैदराबाद अपने आप में ही यू नो एक अलग ही पहचान है हैदराबाद की, और वहाँ की बिरयानी का नाम लेते हैं तो ऑफकोर्स हैदराबाद तो अपने आप ही जुबान पे आ जाता है।
1: तो ये सिर्फ मेरी तरफ से वादा रहा कि आप हैदराबाद आइए, मैं आपको घुमाती हूँ, मैं मुरादाबाद आती हूँ तो आप मुझे घुमाइए।
0: अरे बिल्कुल, डेफिनेटली सुजाता जी, नीकी और पूछ पूछ, इनफैक्ट मैं ही, हमारा पूरा मुरादाबाद आपका वेलकम करेगा और आज आपको पूरे मुरादाबाद में सुना जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से, मोस्ट वेलकम। एंड जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा उनको एक बार अपने बारे में आप जरा बताएं मैम।
1: जी, मेरा नाम सुजाता सेन गुप्ता है, मैं दिल्ली में ही, मैं बंगाली हूँ बट मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, और मैं सर्टिफाइड पॉक्सो एंड पॉश ट्रेनर हूँ। मेरा हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट और उससे प्रिवेंशन कैसे हम कर सकें उस बारे में बात करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं रीच करना चाहती हूँ, उनके पेरेंट्स तक मैं रीच करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके राइट्स क्या है, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, और किस तरीके से हम ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी तरीके की सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज से बच सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, या हम मेंटली कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहे, उसके बारे में मैं बात करती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं रीच अपना बढ़ाना चाहती हूँ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड बच्चों के पास पहुँचना चाहती हूँ ताकि उनको अवेयरनेस हो। तो या बेसिकली दैट्स माय वर्क प्रोफाइल। एंड मैं एक चीज आपको और बता दूं आनंद, मेरा इंटरेस्ट इसमें इतनी और भी ज्यादा है क्योंकि मैं खुद एक सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस वजह से ये टॉपिक कितना मेरे दिल के करीब है।
0: आई एग्री विद यू मैम, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इस टॉपिक पे तो हर कोई बात नहीं करना चाहता, और मुझे लगता है कि आज के समय में जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है, सोशल मीडिया पे इतना इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ, हमारे यूथ के पास, पेरेंट्स के पास, हर किसी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कंफ्यूजन बहुत है, बट हमें राइट इन्फॉर्मेशन को चूज करना बहुत जरूरी है, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, यंगस्टर हो, सभी को जब तक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, आई मीन राइट नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम चीजों को सही से यू नो मैनेज नहीं कर पाएंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट मैम?
1: जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट इन्फॉर्मेशन, राइट एनकरेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी कैसे बच्चों को सपोर्ट किया है और पेरेंट्स को सपोर्ट किया, कैसे ध्यान रखा जाता है हमारे लॉ एंड जुडिशियरी के, अगर ऐसा कुछ भी खुदा ना खासा किसी के साथ हो जाए तो ऐसा कुछ भी रिपोर्ट करते वक्त कैसे ध्यान रखा जाए, क्या किया जाए, सब कुछ एक बहुत अच्छी तरीके हमारे पास गाइडलाइंस है जो हमारे लॉ एंड जुडिशियरी ने हमें दिया है, तो ये सब पता होना चाहिए सबको।
0: एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, पॉक्सो के बारे में बात करूँ तो क्या है ये, इसके बारे में जैसे बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पे ऑनियर, बहुत सारे लोगों को पता है बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब ये सारी चीजें पता लगी तो पता लगा ओ पॉक्सो भी कोई चीज होती है, पॉश भी कोई चीज होता है एंड मतलब कभी सुना था, पर ऐसे इतना डीपली नहीं पढ़ा था मैंने, बट अभी जब आपसे इंटरव्यू करना था तो ऑफकोर्स स्टडी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, किसी भी चीज को करने से पहले है ना हमें पता होना चाहिए किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे पता लगा वो पॉक्सो का क्या होता है मतलब। सो जितने भी लोग अभी ऑन ईयर सुन रहे हैं रेडियो पे आपको, मैं चाहूंगा एक बार आप उनको बताएं ये क्या है, इसका मतलब क्या है।
1: जी, तो जैसे कि मैंने कहा मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ तो पॉक्सो का मतलब तो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असेंट। ये एक एक्ट है, 2012 का एक्ट है।
0: okay.
1: और पॉश का मतलब है आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, उससे आपको प्रिवेंट करने के लिए पॉश है, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये आता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2030। तो ये दोनों ही सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करता है और उससे कैसे निपटा जाए या फिर उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ एंड रिजल्ट ही नहीं, आपको प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन के बारे में भी बात की जाती है इन दोनों में। बस पॉक्सो की हम बात कर रहे हैं तो पॉक्सो जो है, जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश के बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट 2012 में बनाया गया था।
0: ओके ऑलराइट, तो आई होप गाइस आपको पॉक्सो का जो अंदर का डिटेल है वो आई एम श्योर समझ में आया होगा। वही मैम, मैं अगर आपसे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब इसके कानून के तहत बच्चों की जो परिभाषा है वो क्या है, बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं।
1: जी, तो कोई भी बच्चा जो 18 या 18 की एज से छोटा है वो पॉक्सो के अंडर आता है, क्योंकि हमारी जो लीगल एज है हम जो कहते हैं कि 18 ईयर्स के बाद हम एक इंसान को एडल्ट कंसिडर करते हैं, उससे पहले हम उसको एज अ माइनर ही देखते हैं, नॉट एज एन एडल्ट। तो कोई भी जो 18 ईयर्स ओल्ड है या 18 ईयर्स से छोटा है वो पॉक्सो, उसके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो केस पॉक्सो के अंडर आता है।
0: ओके, अगर किसी के साथ सुजाता जी गलत व्यवहार हो तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? होता है कई बार बच्चों को नहीं पता होता है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में क्या सबसे पहले हमें प्रिकॉशंस या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो अगर बाय चांस ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाता है तो बच्चे को जो भी उसके ट्रस्टेड एडल्ट हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो या टीचर हो, उनको शेयर करना चाहिए उनके साथ, और डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें उनकी गलती है या फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड विद देम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये जो एक टैबू है और ये जो एक सोच है इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल ऑफेंस है या आपके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं, स्पेशली जहाँ पे बच्चों की बात आती है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, जहाँ पे वो बच्चों को ये इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से उनको समझा बुझा देते हैं कि जैसे कि उनकी ही गलती हो, और जो सेक्सुअल प्रेडेटर है उसकी कोई गलती नहीं है, जो विक्टिम है उसकी ही गलती है, जो कि बराबर गलत है। तो इस चीज को अपने, ये पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल के और अपने पेरेंट्स को बताइए या फिर अपने किसी भी ट्रस्टेड एडल्ट को बताइए जिसको पे आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि वो आपकी बात को समझेंगे, तो ये डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए और फिर आगे बैठ के सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या आपको ये रिपोर्ट करना है। वैसे तो ये मैंडेटरी है पॉक्सो के एक्ट के अंदर कि अगर किसी के साथ भी सेक्सुअल कोई भी किसी तरह का भी सेक्सुअल ऑफेंस है और किसी को भी, जैसे समझ लीजिए मुझे किसी बच्चे के बारे में पता चलता है कि उसके साथ ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो ये

0: करना चाहिए.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू वेरी मच. आप काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गाइस. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ हैं आप, और इस वक्त साथ सुजाता जी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हैं. पॉक्सो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे ऑन एयर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है. और वैसे ही इन्फॉर्मेशन हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने यूथ के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपका देसी रेडियो. मैम, अगर मैं आपसे वही बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो पेरेंट्स स्पेशली माता पिता जो होते हैं उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना, सही तरीके से बात करना, बट हम इन पेरेंट्स की आज भी वो मेंटेलिटी है कि वो बच्चों को नहीं बता पाते गुड टच बैड टच के बारे में. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पे क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या ये चीज बतानी चाहिए, उनका ये राइट है? एंड मुझे लगता है आज के समय में ऑफ कोर्स जहां 2026 चल रहा है, सब कोई बहुत सुपर फास्ट है, एंड अगर हमारे पेरेंट्स ही हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई और अच्छे से आके बता पाएगा.
0: जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए बच्चे की जो, मैं खुद एक मदर हूँ, मेरी बच्ची 2 साल की है. तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो आप देखिए मेरी बच्ची का पहला एजुकेशन कहाँ होगा?
1: घर पे होगा.
0: तो नहीं होगा, घर से ही होगा.
1: घर से ही होगा,
0: हर चीज की शुरुआत घर से ही होगी. खाना कैसे खाते हैं, टूथब्रश कैसे करते हैं, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, ये सब तो माँ बाप ही सिखाते हैं या घर वाले ही सिखाते हैं बच्चे को. तो पहली जो गाइडेंस है, पहला जो एजुकेशन है, वो हमेशा घर से ही आता है. तो इसीलिए ये हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को दी गाइडलाइन से हर एक चीज के बारे में बताएं. और जैसे कि आपने कहा गुड टच बैड टच, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको अगर आप सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा. इसीलिए उस चीज को इस तरह से बोला जाता है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच. तो ये बहुत कॉमन है, हमें हर जगह सुनने को मिलता है. तो गुड टच बैड टच के बारे में बात करनी चाहिए. अगर बच्चा छोटा है, बच्चा बड़ा है, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए.

इंफॉर्मेशन उनके साथ बांट सकते हैं और उनके उनको उसके बारे में सोचने समझने का वक्त दे सकते हैं, उनको एंकरेज कर सकते हैं कि आप इसके बारे में सोचिए, चर्चा कीजिए और उसके बाद आपके पास कोई भी सवाल है तो हमारे पास आइए। तो सिर्फ गुप्त ही नहीं, हमारे जो टेक्स

0: बारे में सिखाया जाता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो वो बिल्कुल हमें झिझकना नहीं है, हमें उस बारे में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना है, सिखाना है उनको। और ये जो मैंने अभी कहा टैबू जो है, ये बिल्कुल आपने भी वही बात बोली कि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, शर्मा जाते हैं, और हम अपने
1: बेसिकली रिचुअल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी, समाज इन ऑल दैट, इन सब पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और इसी चक्कर में हमारे बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है।
0: देखिए जहाँ पे भी हम ये जो बनावटी बातें हैं, जैसे कि सोसाइटी, समाज, लोग क्या कहेंगे, इन बातों में जब भी हम फंस जाते हैं ना, तो ही हमारे साथ सारी गड़बड़ होती है। क्योंकि जब हम चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो अगर बाय चांस हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द राइट स्टेप, क्योंकि हम हमारा दिमाग उन्हीं बेतुकी और इलॉजिकल बातों में उलझा रह जाता है, जिन बातों का हमारी रियल लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, और हम उनमें ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए उन सबको साइड करके आपको इन सारी टैबूज को, ये सारी की सारी झिझक को साइड में रख के अपने बच्चों के साथ बात करनी ही पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा, पहला एजुकेशन घर होता है। अगर घर में ही खुल के इन सब चीजों के बारे में बात नहीं होगी, चलिए आप खुल के बात नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डिस्कशन कीजिए, थोड़ा हिंट दीजिए, चलते फिरते ही सही, थोड़ा यू नो न्यूज के माध्यम से इस बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, बस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स सेइंग, मतलब क्या है जो रियल फैक्ट है, उनके बेसिस पे हल्की फुल्की डिस्कशन कीजिए। घर में ये सब बात होगी तभी बच्चा जो है, अगर स्कूल में कोई भी इस बारे में ट्रेनिंग देने आएगा, जैसे मेरा काम है स्कूल कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग देना, तो अगर उस बारे में कोई बात करेगा, तो उस चीज को विदाउट जजमेंट बच्चा और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा। पर अगर घर में ये सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, तो आप मत रखिए, पेरेंट्स के दिमाग में जजमेंट होगा, तो बच्चे के दिमाग में भी जजमेंट होगा, और घर में स्कूल में अगर इस बारे में कोई बात करने आएगा, तो बच्चा कहेगा कि ये क्या फालतू बातें हैं, ये तो बहुत ही खराब बातें उन्होंने बताई जा रही है, और इस तरीके से सोचेगा, और इन्फॉर्मेशन को कभी वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा बच्चा।
1: एब्सोल्युटली सुजाता जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी जो पेरेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं रेडियो पे। एंड सुजाता जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन की दुनिया में हर इंसान बहुत एक्टिव है, बच्चे बड़े हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त रख रहा है सोशल मीडिया के टाइम पे, मतलब मुझे लगता है कि किसी के हाथ में आजकल फोन होता है, छोटे बच्चे बड़े है ना सब यूज करते हैं, तो ऑनलाइन की दुनिया में बच्चों को सेफ रखना, सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी जरूरी सावधानियां हैं जिनको उन्हें ध्यान में डेफिनेटली रखना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, या फिर हमारे मेरी जैसे आज की यंगस्टर हो।
0: जी जी, तो सबसे पहले तो जैसे आपने कहा छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, और तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि घर में एक डिस्कशन का माहौल वो होना ही चाहिए, और छोटी छोटी चीजें बच्चों को यहाँ वहाँ थोड़ा सा सिखाते रहना चाहिए, चाहे वो गुस्सच बैड टच हो या फिर इन सब चीजों से रिलेटेड डिस्कशन, तो वो तो एक बेस आपका होना ही चाहिए। दूसरा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी उस एज में नहीं है जहाँ पे आप उनको पर्सनल मोबाइल दें, तो अगर वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वो मोबाइल पेरेंट्स का होना चाहिए, बच्चों का खुद का कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल हमेशा पेरेंट्स का होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आजकल रिसर्च में ये निकला है कि छोटे स्क्रीन पे बच्चे को कुछ दिखाना ही नहीं है, अगर एक्सपोज करना है स्क्रीन पे, तो वो हमेशा बड़ा स्क्रीन होना चाहिए, जैसे कि टीवी का स्क्रीन, छोटा स्क्रीन, चाहे लैपटॉप का हो, टैब का हो, या आईपैड का, मोबाइल का स्क्रीन, ये बच्चों को एक्सेसिबल होना ही नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे ही डिवाइस आपकी पर्सनलाइज हो जाएगी, जैसे कि टैब हो गया, आईपैड हो गया, मोबाइल हो गया, ये जैसे ही बच्चों के हाथ में आएगा, तो कॉन्टेंट भी पर्सनलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन छोटा है, इसको डिवाइस छोटा है, इसको हर वक्त मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है, तो बच्चा क्या देख रहा है, किस तरीके से, और आपको पता ही है, समझ लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल एक कुकिंग का वीडियो देखा, तो आपको यूट्यूब या कोई भी, सिर्फ यूट्यूब ही क्यों, सारे के सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो आपको बार बार कुकिंग के ही वीडियो दिखाएंगे। आपने सबका वीडियो देखा, तो आपको बार बार फैशन के वीडियो दिखाएंगे। ऐसे ही अगर वीडियो देखते देखते, स्पेशली अभी रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है, तो ऐसे देखते देखते आप कुछ भी वीडियो देखते हैं, सडनली उस एल्गोरिथम में आपको वही पुश किया जाएगा, सडनली उसके बीच में कभी कभार दूसरे वीडियोस भी आ जाते हैं एंड यू नेवर नो व्हाट दोस वीडियोस आर, क्या वो सेक्सुअली सब्जेक्टिव वीडियोस हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनके व्यूज बहुत ज्यादा है और जो ये सब वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं, उनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, क्योंकि व्यूज से ही उनकी इनकम है, तो उनको इस चीजों से मतलब नहीं है कि बाय चांस किसी छोटे बच्चे ने देख लिया या एक टीनेज बच्चे ने देख लिया तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर डिवाइस यूज करना है तो वो तो पेरेंट्स का होना चाहिए, बट हो सके तो मोबाइल टैब आईपैड ये सब डिवाइस छोटे बच्चों को देना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बड़े स्क्रीन को ही एक्सपोज कीजिए अगर करना हुआ तो, और उसके थ्रू बड़े स्क्रीन के थ्रू मॉनिटर करना भी आसान है कि भाई बच्चा बच्चे से रिलेटेड कंटेंट देख रहा है या मिसलीड हो जा रहा है। बच्चों को भी ये ध्यान रखना है, सिर्फ रील स्क्रोल करना ही, जिसे डूम स्क्रोलिंग आजकल बोलते हैं, तो सिर्फ वही एक चीज नहीं होती, आप भी देखिए कि आपके पास क्या कंटेंट आ रहा है, क्या ये आपके पसंद का कंटेंट है, क्या ये आपके मतलब का कंटेंट है, ये क्या आपको एंटरटेन कर रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये इन सब किसी भी ब्रैकेट में नहीं है तो व्हाई आर वी इवन कंज्यूमिंग दैट कंटेंट। तो अगर हम कंटेंट कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी हमें एक पर्पस, एक मोटिव तो ढूंढना ही पड़ेगा कि समहाउ दिस कंटेंट हैज टू बी फुलफिलिंग, हमारे लाइफ में कंडीशन होना चाहिए। पर अभी क्या हो रहा है, जो हम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी डाउन जा रही है इंस्टेड ऑफ एडिंग टू आवर पर्सनैलिटी।

0: आर पर्सनैलिटी एंड नॉट रिड्यूस आर होल पर्सोना. बट अभी कॉन्टेंट का जमाना ऐसा है कि लोगों को सिर्फ अपने व्यूज का मतलब है, और उसके लिए वो कैसे रेट वेट करें, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें के नाम पे वो कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, और वो कुछ भी कंटेंट किसी भी कहीं पे भी पहुंच रहा है, किसी के पास भी पहुंच रहा है. तो थोड़ा बच्चों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि हम कुछ भी नहीं देखेंगे. हम वो इंसान नहीं है कि आप कुछ भी पड़ोस देंगे और हम खा लेंगे.
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा.
0: चीज हमको कंटेंट में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला कुछ भी अपलोड करेगा और हम देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा. चाहे वो कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, आप कुछ भी कैसे भी अपलोड कर देंगे और हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, नहीं. या तो वो हमारे पर्सनैलिटी में कोई एडिशन होना चाहिए, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या हम

0: हमारा कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, क्या ऐड क्या कर रहा है हमारी जिंदगी में, वो कुछ तो वो होना चाहिए
1: मोटो,
0: तो ये सब छोटी छोटी, हाँ कुछ तो मोटो होना चाहिए
2: ना,
0: बिना पर्पस बिना मोटो के लाइफ में तो मतलब
2: दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, फिर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, यू नो कहीं ना ले सुजाता मैम, थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड सच अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू, कैसे हमारे 25 मिनट हुए, आई कांट बिलीव दिस, कैसे हम लोगों ने 25 मिनट बात कर लिया, हमें पता ही नहीं चला इस टॉपिक पे, इतना इंटरेस्टिंग था ये कॉन्वर्सेशन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी लोग सुन रहे होंगे उनको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा होगा आई एम श्योर। सो चलते चलते सुजाता जी हम आपसे जाने की इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते आप क्या संदेश हमारे तमाम मुरादाबादी को देना चाहेंगी, जहाँ भी लोग हमें सुन रहे हैं, क्या एक मैसेज आप कन्वे करेंगी जाते जाते हमारे लिसनर्स को?
0: मैं यही कहूंगी कि हमें ये प्रिविलेज है कि हम एज अ

लाइफ वी हैव द प्रिविलेज एज बॉर्न एज ह्यूमन एंड हमें उनको हर दिन याद करना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी कुछ भी हमको परोस देगा, कोई भी कुछ भी हमको बोल देगा और हम उस चीज को कंज्यूम कर लेंगे नहीं।

0: बारे में हमें ज्यादा सोचना है rather than the end में क्या हमारे पास लॉस है उसके बारे में सोचने से ज्यादा.
1: Very nice, ma'am. Thank you so much. Wonderful message and बहुत अच्छा लगा बात करके. Definitely next time आपसे जुड़ेंगे और ढेर सारी conversation करेंगे and बहुत मजा आया ma'am आपसे. Thank you so much बात करके.
0: Thank you Anand. Thank you so much.
1: Lovely talking to you ma'am. So guys अभी आप सुन रहे थे हमें और साता जी को. ये है आपके शहर का अपना first community radio station FM मुरादाबाद 89.6 radio. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. फिलहाल लेता हूँ आपसे इस प्रोग्राम से जाने की इजाजत. जल्दी आपसे मिलेंगे, फिर होंगी और भी ढेर सारी बातचीत. तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सोई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. बाय बाय, टेक केयर.

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखेड़ो है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

0: ओ माझे किंग,
1: मी
0: घरी नाही जायचं का? मी तुझी गर्ल जाने.

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर दो एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। पुस्तकालयों को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गढ़ तक पहल शुरू की। अब समाचार विस्तार से।

0: दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के माध्यम से राजधानी के इतिहास को शोध आधारित और प्रमाणिक रूप में नई पीढ़ी और दुनिया भर के शोधकर्ताओं तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य अभिलेखों पर उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना, अभिलेख प्रबंधन को मजबूत बनाना, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच को और आसान बनाना है। वहीं पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप का उद्देश्य दिल्ली के समृद्ध स्थलों और स्मारकों का अध्ययन, संरक्षण और संवर्धन करना है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए कुल 12 फेलो नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें प्रतिमा 25 से 50,000 रुपए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजधानी में व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, नए इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर चर्चा की गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि बैठक में उद्योगों से संबंधित नीतिगत सुधार और राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने यमुना डायलॉग्स पहल के अंतर्गत पहली स्टेक होल्डर परामर्श कार्यशाला आयोजित की। ये पहल दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू द्वारा यमुना के बाढ़ मैदानों के प्रारंभिक दौरों और उसके बाद DDA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के बाद शुरू की गई। कल आयोजित इस कार्यशाला में DDA के उपाध्यक्ष ने चर्चा का नेतृत्व किया। बैठक में यमुना के बाढ़ मैदानों के अनुरूप विकास की रूपरेखा तैयार करने और पर्यावरण अनुकूल घाटों के निर्माण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। DDA ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से दिल्ली यमुना कॉम्पैक्ट की नींव रखी गई, जो यमुना कॉरिडोर के पुनरुद्धार, संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए साझा रोडमैप के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने सड़कों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था, नालों की सफाई तथा क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्री सिंह ने जनता दरबार में क्षेत्र से आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राजधानी के राजा विहार में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने और समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी के उद्यान मार्ग पर स्थित इस दो मंजिले पुस्तकालय में 35,000 से अधिक पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं और संदर्भ प्रकाशनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। शोधार्थियों और अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्ययन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
2: वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के लिए यह पुस्तकालय एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने दिल्ली के सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में लाने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया।
4: सार्वजनिक पुस्तकालय सब युवाओं के लिए एसेट का काम करेगी। वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक जो माहौल मिलना चाहिए पढ़ाई का, इस लाइब्रेरी के माध्यम से मिल पाएगा।
2: प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली कालका एक्सप्रेस और दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के लिए दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राजधानी के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी ये सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तर रेलवे ने परिचालन दक्षता, राजस्व अर्जन, टिकट जांच तथा यात्री सेवाओं के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन्स ऑन डिमांड योजना के अंतर्गत 1,887 विशेष रेलगाड़ियों का सफल संचालन किया गया, जिससे लगभग 185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जीत हुआ। वहीं प्रतीक्षा सूची की नियमित निगरानी करते हुए विभिन्न रेलगाड़ियों में 4,120 अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे 28 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर टिकट जांच से अर्जित राजस्व के आधार पर जोनल रैंकिंग में उत्तर रेलवे ने इस वर्ष अप्रैल और मई में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जून में पूरे भारतीय रेल में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट दर्ज की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा के दौरान सहयात्रियों से संवाद किया और उनकी दैनिक यात्रा, नागरिक सुविधाओं तथा राजधानी के विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रियों के साथ बातचीत से उन्हें उनकी अपेक्षाओं और दैनिक अनुभवों को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रभावी और जन केंद्रित शासन के लिए नागरिकों की बात सुनना और उनकी जरूरतों से जुड़े रहना आवश्यक है। श्री संधू ने कहा कि लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों को समझने से शासन को अधिक उत्तरदायी और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने ब्लू लाइन का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे आधारभूत संरचना और यात्री सुविधाओं के उन्नयन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन रीमॉडलिंग, नए एस्केलेटरों की स्थापना, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटों के पुनर्व्यवस्था तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने से जुड़े अन्य कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास और उन्नयन कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध निष्पादन और यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में शुरू की गई ये योजना आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है।
5: वो एक ऐसा दौर था जहां पे देश भर में ही नहीं दुनिया में एक महामारी की परिस्थिति उत्पन्न थी। कोविड के दौर से हम लोग उस वक्त गुजर रहे थे और उस वक्त ये सोच और उस वक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिन्होंने आने वाले समय में भारत भारतीयों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यकीनन वो एक ऐसा दौर था जहां से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चुनौतियां चल रही थी, जहां हम लोग को इस बात का एहसास हो रहा था कि कल को भविष्य में अगर दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पे बाधाएं आती, ऐसे में कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। युवाओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली में जन से गण तक नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत के संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराना है। एक रिपोर्ट।
6: जन से गण तक एक अनुभवात्मक संग्रहालय आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को भारत की संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और नागरिक मूल्यों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संग्रहालय की संविधान दीर्घाओं का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नागरिकता और जनभागीदारी जैसे विषयों पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के पहले सत्र में दिल्ली के 5 स्कूलों के 21 छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को सहभागी विद्यालयों द्वारा नामित विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने बताया है कि जो विद्यालय अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए नामित करना चाहते हैं या भविष्य के सत्रों में शामिल होना चाहते हैं, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि निरंतर जन भागीदारी और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रयासों के कारण रोहिणी आज दिल्ली के सबसे हरित क्षेत्रों में से एक बन चुका है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से स्वस्थ, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और पीएमएमएल ने विद्यार्थियों में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए जन से गण तक पहल शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
8: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
9: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
8: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
11: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
12: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
11: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
12: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
13: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है। आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में दाई का
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजेस, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है। तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं। बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती हैं। उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है? हमारे स्टाफ की पेशेंट थी मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है? अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है. शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती. अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड. तो इन्वेस्टिगेशन एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती. और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है.
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर. और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं. आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच. आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर.
0: ठीक है.
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता. एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: गवर्नमेंट इज रनिंग कि अब पोलियो इरेडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
0: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डासिल, ये सब वैक्सीन होती हैं. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप इयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पर महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है.
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए. ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन. कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी यू नो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं. जो अपने रिचुअल्स को, कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
0: Correct.
1: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
0: Right.
1: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा. ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा? नहीं हो सकता ना. सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस. उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग, एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है. बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स. की ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का. आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. तो थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
0: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं?
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं.
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है. बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32, एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई. जिग करो, स्वच्छता की जिद करो.
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद.
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स. यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट.
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है.
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद. मोबाइल नंबर 7055070552.
0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. और आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजीम. अजीम भाई, वेलकम टू FM मुरादाबाद. कैसे हो भाई?
6: बढ़िया, एक नंबर.
0: क्या बात है, एक नंबर तो आप हो ही, नो डाउट यार. और अजीम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है. आई एम श्योर आज की शाम भी कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आए हमारे दोस्तों के लिए. तो अजीम ये बताओ, रेडियो पे आके कैसे लग रहे हैं अब जब आए?
6: मजा आ रहा है.
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया.
6: डर ही रहा हूँ लेकिन बढ़िया, मजा आ रहा है.
0: वेरी नाइस यार, लेकिन डरना मत भाई. देखो जो मेरे साथ बैठते हो ना.

0: तो बैठे रहेंगे आपके साथ, अभी आपकी फरमाइशी गाने भी बजाएंगे।
1: नहीं नहीं मेरा आनंद, तुम्हारे दिल से एक और आवाज निकलने वाली है।
0: हाँ हाँ प्लीज, मैं अपने दिल को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप अपने दिल के बटन ऑन कीजिए, बोलिए सर।
1: इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए।
0: वाह जी वाह।
1: इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए।
0: वेरी नाइस।
1: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं।
0: हाँ।
1: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वो है जो हर हाल में साथ निभाए।
0: क्या बात है, हम साथ निभाना साथियां निभाएंगे सर, टेंशन मत लो, आज रात को 9 बजे मैं टीवी पे देखूंगा हम साथ निभाए। हम साथ साथ है, देखिए आपने।
1: हाँ देखिए।
0: हाँ तो बस वही है, हम साथ ही है यार।
1: तो एक आनंद एक बात भी पूछनी चाह रहा था मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में एक शायर को कब लगता है कि वो शायर बन गया है?
0: इससे जोक से बड़ा अखिल भाई, आपने जो बोला ना एक शायर को कब लगता
1: है, शायर, हाँ।
0: एक शायर बन गया है, मुझे
1: तो
0: लगता
1: ये बात हम पूछना चाहेंगे अजीम साहब से पूछेंगे।
0: वैसे आपको आपको क्या लगता है, मैं ये आपका जो सवाल है वो आपके ऊपर ही मैं रिपीट मारता हूँ, आप बताओ मुझे।
1: मेरे हिसाब से पहले अजीम साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी अपना विचार रखूंगा, अपना विचार रख दूंगा तो फिर
0: आइडिया मिल जाएगा ना मोहम्मद अजीम जब बोले। अजीम क्या लगता है भाई?
2: मुझे लगता है वो जब लिखना चालू कर दे, अपनी कलम उठा ले
0: और जो दिल से उसकी फीलिंग आए, जो दिल से
2: लगे कि चार आदमी को सुनाने के बाद लग रहा है कि हाँ वो अच्छी तारीफ कर रहे हैं, तो वो शायर बन चुका है।
0: क्या बात,
2: बस उसे अपने आप।
0: मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कि जब जब आपकी इमोशन आपकी बातों में आने लग जाए, आपकी कलम में वो एक्चुअल में फीलिंग आने लगे, जो जो सामने वाले को रिलेटेबल फील करा दे, तो फिर आप शायर बन गए। क्योंकि आपकी शायरी से किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बात बोली जा रही है, मतलब ये मेरा जिक्र हो रहा है, तो आप शायर बन गए। प्राची कुछ कहना चाह रही है, ये भी शायर बनेगी आज, मुझे पक्का यकीन है। हाँ प्राची।
3: नहीं, जैसे अभी आपने पूछा कि कब एक शायर को लगता है कि वो शायर बन गया है, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी से, मुझे तो अपने साथ ऐसे ही लगा था, पता नहीं मैं शायर हूँ या नहीं।
0: नहीं तो नहीं है, बोलती रह आगे।
3: कि जब हम मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम उसको हम फ्रेम कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमने देखा है हाँ उसको फ्रेम कर पा रहे हैं, उसको मतलब लिख पा रहे हैं, तो तब हमें लग जाता है कि हाँ कुछ हमने अच्छा लिखा है।
0: क्या बात है, मैं भी ऐसे लिखना शुरू करूंगा, शायद सबको लग जाए मैं अच्छा आरजी हूँ। माइक भैया की तरफ करो, आप जरा भैया से पूछते हैं। हाँ जी भैया, आपका सवाल मुबारक हो आपको, आप बताओ आप।
1: मेरा जो थॉट है वो यही हाँ। है कि जब आपके जो जहन में चल रहा है, जो आपके
0: जी
1: जो सपनों में चल रहा है, एक्चुअली क्या है शायरी में वो चीजें जो आप ना रियलाइज करते हैं, मतलब आपके पास होती नहीं है मगर आप उसे एक इमेजिन करते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जब वो इमेजिनेशन आपके साथ आपकी कलम पे उतरना चालू हो जाए और वो उस तरीके से उतरे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये तो मैंने भी इमेजिनेशन किया था, या ये ऐसा कुछ है कि इन्होंने हाँ जो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर कहते ना कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है, ख्यालों में आती है आपकी, मगर वो चीजें आपको भी पता है वो पूरी नहीं होती। तो जब आपके हाथ में कलम है और आपने उन ख्यालों को अपने साथ उसमें लिखा है और जब दूसरों को दूसरों तक वो बात पहुंचाई है, तब जाके लगता है कहीं ना कहीं शायर ये बंदा
0: शायर है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चा है तू मेरा, समझ रहा हूँ मैं। वो डायलॉग मेरे को अखिल भाई ने दिया था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अखिल भाई, बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात से यकीन हो गया कि शादी के बाद हर कोई शायर बन जाता है। मैं इस बात को मान सकता हूँ अजीम, एक घर का एक घर वाला शायर जो होता है, जैसे अखिल भाई एक घर के अच्छे शायर है, वो कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमेशा जब हमारे स्टेशन में आते हैं। तो आप बताओ, आपने तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, कोई अच्छी अपनी शायरी के माध्यम से कोई थॉट, कोई बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप?
2: मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी शायरी है नहीं, बट
0: अपने दिल की फीलिंग्स कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई थॉट कहना चाह रहे हो?
2: बहरहाल मुझे सच बस बताऊं तो मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ,
0: अच्छा मजा आया,
2: आनंद भाई से मिला, टीम से मिला, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी शायरी आप लोगों को इतनी पसंद आए कि आप मुझे बार बार बुलाएं, रिक्वेस्ट करें आनंद भाई के कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे बुलाएं।
1: बताएं मैं श्रोताओं की इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहाँ पे आप मिल सकते हैं आसानी से?
0: ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं इनका एक अच्छा सा फोटो शेयर करता हूँ, बढ़िया सा अच्छे से करली वालों वाला, तो इनको लोग तुरंत लाइक करेंगे और फॉलो भी करेंगे। वेल अब लेंगे आपसे जाने की इजाजत, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे आप FM मुरादाबाद पे डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं, और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, गाइस बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते
0: रहिए। बाय बाय।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें ग्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे।

0: अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: है। यहाँ 8431281 8491552 3714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाश।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है। इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं आप सभी को पसंद आती है। और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इस प्रोग्राम को धासु बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुनकर मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया। हेलो जी, हाउ आर यू?
3: कैसे
2: आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है।
3: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
2: धासु वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते
3: आपके
2: हैं।
3: धासु वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
2: कोई शायरी मारूं,
3: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
2: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है और आप बिल्कुल धाकड़ आरजी बनते जा रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
3: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
2: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
3: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर।
2: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना,
3: बहुत
2: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
3: और जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हमने बुलाया है, उसे
2: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है।
3: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है, उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
2: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
2: हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
4: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
2: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
4: सर तारुफ भी पिछला वाला है।

0: कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक।
1: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है आपका, लुक चेंज है, स्टाइल चेंज है, तो हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले क्यों अखिल जी?
0: बस सर कपड़े चेंज हुए, बाकी पुराना वाला चल रहा है
1: जो नए लोग सुन रहे हैं।
0: देखिये
1: पिछली बार जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
0: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ, आप छोटे से मोहल्ले चंद्रनगर का
1: जी जी,
0: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
2: आज बढ़िया, आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए, और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है, और जितने भी हमारे लिसनर
1: सभी का सवाल है
2: कि कमल जी एक बात बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
0: सही कहूं तो मेरे लिए एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूं, कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूं, तो मन में बहुत सेटिस्फेक्शन से लगता है कि हाँ कुछ किया है, अलग हटके कुछ
2: तो
0: किया।
2: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई?
0: मतलब आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
1: देखिए ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जाना है। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
2: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
1: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम
0: सुनेंगे अखिल जी, क्योंकि खुद शादी शुदा था वो जानते
1: हैं, इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझ ही होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे, क्यों अखिल जी?
2: बिल्कुल सही बात,
1: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
2: जो मेरे अंदर से निकल रही है।
1: थोड़ा कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना, कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे।
0: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं, गर्मी।
1: गर्मी बिल्कुल, आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
0: मौसम काफी ठंडा,
2: दो चार भी हो रहा है, रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहे हैं,
0: क्योंकि बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखेगा गर्मी पर, कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
1: वाह,
0: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ,
1: वाह जी वाह,
0: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के मैं मानसून की बारिश हूँ।
1: क्या बात है? मानसून की बारिश, मैं मानसून की बारिश हूँ। अच्छा मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना बारिश वाला,
2: एकदम
1: तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा, फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद, आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, खूबसूरत गाना उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको आज तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे जिसमें कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक
1: एकदम
0: वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो, मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्तियां आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर
1: बस
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर एक कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफियर बताते हैं मुझे, खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ वो बोलते नहीं है बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं?
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवेज सर हाँ आपका स्वागत है
2: सर।
0: जी सर तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइनें उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: हो गया हूं कि थोड़ा सा चाहता हूं कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू
0: बहुत ही अच्छी बात है ये तो, बहुत ही बढ़िया। जी सर आप कुछ फरमाएं?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख रही खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपके कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सभी मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना। आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं?
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: सुनकर गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आज तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो, मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर बस कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, हम फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफियर बताते हैं मुझे। खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं हो बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ वो बोलते नहीं है बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं?
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी, इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा।
1: हो गया हूं कि थोड़ा सा चाहता हूं कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत ही बढ़िया जी सर आप कुछ फरमाए।
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकेलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है।
2: दोनों ही चीजें हैं,
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों ही चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: क्यों, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना। आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक का। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से
1: आज मैं अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास कि मैं अगर मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफकोर्स इतने कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो दिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं जो सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाए हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं, और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं,
0: बिल्कुल
1: ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी, कमल सर आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ही बताइए सर, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है?
2: बिल्कुल आ रहा
1: है। एसी चला दें कि अगर आप कहें तो?
2: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी,
1: बहुत ही बढ़िया।
0: चलिए हम आ चुके हैं, ये
1: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
0: इस बार इन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
1: भाई वो आपको पता होगा कि अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
2: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो
1: है सर। ऐसा तो देखिए, अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था एटलीस्ट आप तो मेरा साइड देंगे।
0: देखिए साहब, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
2: सही मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
1: हाँ, देखिए अखिल भैया, लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
0: सारी ट्रेनिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है,
1: समझ सकते
0: हैं। चलिए आइए कमल जी, आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
1: देखिए मैं इस शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आई तो मुझसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर और शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
2: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे।
1: हाँ जी,
2: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं।
1: वाह।
2: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं। आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं।
0: क्या बात है,
2: नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात कही,
2: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं।
0: बहुत खूब,
2: राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं। राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं, हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं।
0: क्या बात,
2: हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया अपने मुरादाबाद की बात।
1: नहीं, ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कम ही है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती
0: है।
1: हमें लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है जी।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं।
1: वाह।
2: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात है।
2: देखिएगा
1: जी
2: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नव रूप हूँ मैं। स्मार्ट हूँ फिर भी कहीं अपवाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
0: क्या बात,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
2: और अंतिम चालन देखेगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया।
2: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी, देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं।
1: क्या बात,
2: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए।
1: आपने कभी देखा उसके अंदर मुरादाबाद की नजारे बदल गए? आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी। देखो ना, जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटें।

0: वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है, तो एक काम करते हैं इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले, रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
0: वाह वाह वाह,
1: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
0: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
1: हाँ, वो उसके बाद जो खामोशी आई थी समझ में आ गया था कि आपको बात समझ
0: नहीं, मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है, लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की जो ये बेहतरीन वाइव है इसको फुल ऑन सैटिस्फैक्टरी और अमेजिंग बना रहे हैं अखिल जी, मैं और साथ में कमल सर जो हमारी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। तो कमल जी, आपको आनंद आ रहा है यानी हमारे स्टूडियो में?
2: सर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अखिल ही अखिल है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: मैं बस सभी अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा जो गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या जो आसपास कहीं बाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, मतलब हॉर्न फ्री रखें। इतना शोर शराबा हो जाता है कभी कभी हॉर्न से कि साउंड पोल्यूशन भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप कमल जी इस बारे में?
2: सर ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्ट से अलग हो
0: जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ये अखिल जी हैं जो दिल से दिल तक बात बनाते हैं।
1: इसके ऊपर कोई शायरी है?
0: हाँ,
2: अब इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा अगली बार इस टॉपिक पर भी विचार करना पड़ेगा।
0: मैं बताता हूँ कमल जी, यहाँ रेडियो वाले ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका ट्रैक कभी भी हट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हर डायरेक्शन में प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों जी,
2: मैं तभी तो उनको सही ट्रैक पर ला दूं, ये फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं।
0: एक मेरे को शायरी दिख रही है कि बहुत अच्छी सी है, मुझे लगता नहीं वैसे अच्छी होगी क्योंकि मैं करता नहीं हूँ शेर व शायरी।
1: नहीं, ये व्हाट्सएप पे दिख रही है आपको?
0: हाँ, नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दिख रही है, मेरे को किसी ने लिख के भेजी है, मेरे को वो दिख रही है, तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें तो कुछ बताना चाहिए था, कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें भी तो कुछ बताना चाहिए था, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए था।
1: क्या बात कही,
0: अच्छी बात है ना।
1: वो तो घर बसा लेगी आप आनंद जी, ऐसी लिखते रहो मेरे लिए, वाला घर बसा जाएगा।
0: ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा था यार, देखो कोई बंदा खुद पे थोड़ी ना चिपकाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो। ये तो किसी ने मेरे को भेजी तो मैंने पढ़ के सुना दी। एनीवेज, हमारी शायरियों में वो कहां दम है जो कमल जी की बातों में है। क्यों अखिल जी,
1: बिल्कुल सही।
0: बैक टू कमल जी के पास चलते हैं, कुछ बढ़िया से सुनते हैं।
1: भारत कमल जी कितने साल हो गए आपकी शादी को?
2: 13 साल।
1: 13 साल का तो एक्सपीरियंस कमल जी के साथ है ही।
0: क्या बात है, बट हम उससे एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम
2: आज लिखने लिखाने का 13 साल का नहीं है।
0: हाँ, आज हम उससे
2: पिछले 4-5 साल का।
0: अच्छा, जो अब लिखते लिखाते हैं आप। हाँ, ये वाला बहुत बढ़िया, तो इसी बात पे कुछ फरमा दीजिए जनाब आप। अच्छा, अभी जो है मौसम चेंज होने वाला है, जैसे अभी गर्मियों के से हम सीधा मानसून की तरफ जाने वाले हैं, मतलब बारिश हरियाली चारों तरफ और रोमांस का महीना, रोमांटिक महीना कहते हैं
1: सावन, बच्चे स्कूल जाने वाले।
0: तो इसमें कुछ सुनाओ यार आप सर, तो बच्चे स्कूल जाने वाले
1: कल से,
0: बच्चों के लिए कोई शायरी नहीं है फिलहाल।
2: तो उसके तो मानसून की चाले ने पहले चिपका दी ना।
0: हाँ हाँ, अगर कुछ और हो तो वो भी चिपका सकते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने चार पंक्तियां उन्होंने अच्छी से लगा दी थी, हमने
1: ये फेविकॉल का एड था जो कमल जी कर रहे थे।
2: चार पंक्तियों में जीवन की सच्चाई देखेगा कि जिंदगी क्या है।
0: अच्छा चलिए, बिल्कुल सर,
2: कि अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई।
0: वाह वाह,
2: अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई, नींद दहाई ख्वाब सैकड़े और खुशियां हैं एक इकाई।
1: क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है कि कमल जी की शायरी सुनकर तो मुझे कॉलेज के दिन ही वापस याद आ गए। तो नेहा जी आपको, मतलब कमल जी हमारे इतने भी पुराने नहीं है, मगर हाँ शायरी उनकी बहुत ही अंदर तक जाती है, तो पुराने दिन तो हमेशा सभी को याद आ जाते हैं।
0: True, got it, एकदम, I agree with you. बहुत ही अच्छा, और मुझे लगता है कि देखो यार अखिल भैया, पता है जो शेर व शायरी का माहौल होता है ना, इसका डबल मजा हो जाता है अगर एक शायर आपके सामने जबरदस्त बैठा हो, है ना, जैसे कि आप बैठे हैं मेरे सामने, आप भी कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी सुनाते रहते हैं, मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, तो हमें चुप हो चाहिए यार, इज्जत का मामला है।
1: कमल जी कहेंगे चार लाइनें सुन के मेरी वाहवाह कर देते हैं, उसके बाद अपनी बात बोल देते
2: हैं, कहना पड़ता है पूरी तो सुन लो,
0: पूरी मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों
1: पूरी कीजिए आप पहले, आपकी वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना।
2: नहीं, जो मुझे भी पता चल जाता है कि चाइल्ड को दम था या नहीं था।
1: देखा चुपर उस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर हम थोड़े से अनजान हैं इस फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
2: चलिए जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्तियां और देखिएगा।
0: बिल्कुल।

0: सर
1: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
0: वाह,
2: बहुत खूब।
1: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है। किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: जी जी।
1: वैसे तो जितने भी मुंह हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं। वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं। कोई खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
2: क्या बात है।
1: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
2: बहुत सही बात कही आप। दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही। मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
0: क्या बात है। बिल्कुल, आपको जवाब मिलता भी है। वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं, बहुत अच्छी आपने करी है। थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं। फिलहाल तीन लोग बैठे हैं। मजे की बात ये है,
2: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
0: बिल्कुल, ये बचपन से हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
2: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है। आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई। खैर, कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
2: बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
0: वो गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
2: हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अगले एपिसोड में, अगले लिंक में क्या हो जाए, अभी किसने कुछ नहीं जाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो। गाइस, अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं। मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है। कमल सर भी सोच रहे हैं कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने। अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर, एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं। आपका ही मजा।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। धड़कना सीख जाते हैं,
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या बात है, और इनकी जिंदगी में भी एफएम आ गया है, तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, क्या लगता है?
0: दिल से दिल तक चल रहा है
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना सख्त कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये तो हिला ही देता
1: है। कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है?
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, आप भी तो शादी शुदा है। मैं ये बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल। आप लोग इस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। खैर, बैक टू पॉइंट, इससे जोक सपाट। अखिल भाई, मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे अब इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसे आप लोगों की महफिल है।
1: जी जी, नहीं हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका महफिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा नाम,
2: जो जाना माना नाम होता है।
1: ओके,
0: ये स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने।
1: जी
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं।
1: वाह क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने और कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में,
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कह रही
2: है, नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: दिखते हैं, क्या बात है, क्या बात है।
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जब वो दिल से लिखते हैं ना, और जब वो दिल से सुनाते हैं, तो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आए, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%,
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में।
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से, और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी, बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है।
1: हाँ,
0: उन शब्दों को अपने जहान में लाके आपको
2: उसमें आपकी जो भी घटनाएं घट रही है उन पर थोड़ा नजर रखिए,
1: मतलब आपको ऑब्जर्व करना है।
2: मुझे तो
1: दिल से
2: मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अखबार से मिलती है।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया,
0: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
2: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
1: क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस। आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे भी देते हैं, तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
0: नहीं, अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
2: नहीं, खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छा आपने कहा है सर,
2: खुद पर लिखना और खुद पर हंसना,
1: जी
2: बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं। एनीवेज,
0: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं।
1: बहुत नहीं, दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
0: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए, इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए, आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
0: महफिलों की रौनक तुमने ना एकदम वो कर देता, महफिलों की रौनक लोग नहीं,
1: वाह,
0: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
1: क्या बात है,
0: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को, और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं सर। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
2: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में, यू नो हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
0: और सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
2: पर भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
1: वाह।
2: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई।
1: वाह जी वाह।
2: उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
0: बहुत खूब।
2: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
0: क्या बात है,
1: क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल कर
0: लोग
1: दिया।
0: आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
1: एब्सोल्युटली सही
0: कहा। ये शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया।
2: तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या? आलम बिरयानी की प्रमोशन भी हो गई
1: सर। यहाँ कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है।
1: जैसे कि मैंने कहा था आपसे कुछ, अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती बगैर दो लाइन कहना चाहें जाते जाते।
2: चलिए साहब, जैसा हुक्म है।
1: हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती, मिलना मिलाना, महफिल, इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
1: वाह वाह।
2: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
1: क्या बात है।
2: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
1: अरे वाह।
2: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।
1: क्या
0: बहुत बढ़िया,
1: खूबसूरत।
2: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा। बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा, बस करम इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
1: क्या बात है।
2: बस करम इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
0: क्या बात कही, क्या बात कही। जिनके हाथ में जाम है वो तो
2: उनका भी परमिशन हो गया,
0: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं, बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान
0: करते रहें।
1: है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहें। बिल्कुल। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चलें अपना पोटला उठा के बातों का पटारा लेके,
0: कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और करेंगे दिल से दिल की बातें।
1: क्या बात है। तब तक के लिए मैं यानी आरजे आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
0: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: बाय बाय।

0: दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

060-304-534.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना डर के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।